0: समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हुणे तुसी सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण। मीडियम वेव 343 इशारे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।

0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले स्वेद दे 6:05 हो रहे ने। ज्ञान अमृत

0: जय हिंद जी, संधु साहब बचे आलियो।
1: जय हिंद जी, जय हिंद। बढ़िया राम जी, सुनाओ की हाल चाल है।
0: हाल चाल तकड़ा है। देखो संधु साहब, खेती च अज एक चीज का बड़ा सानू गौर करन दी लोड़ है या सोचने दी लोड़ है कि साडे लई की महत्व है ते की महत्वपूर्ण नहीं है। जे असी इस नजरिए नाल खेती दे विच काम करांगे ते फिर काफ़ी हद तक जिहड़ा है असी सुखाले भी हो सकदे और साडा मुनाफा भी वध सकदा है। जे असी इसे तरह रवायती पुणे नूं भी असी तां कणक झोने दे चक्कर चों बाहर नहीं जाणा ते फिर साडा बनना कुछ नहीं है। लंबे समय दे विच इह चिर स्थाई खेती असी नहीं कह सकते।
1: देखो रुड़िया राम जी, कि खुराक जिदा गल कर रहे होंने
0: खाइए दाल जिहड़ी निभे हड्डां दे नाल,
1: सो नाल तां देखो निभूगी जी असी पैदा करांगे।
0: बिल्कुल,
1: ते दालां दे विच बड़ियां संभावनां हुंदियां ने जी, जे असी अपने पक्खों लै लईए कि प्रोटीन दे नाल भरपूर हुंदियां ने दालां, ते साडा फायदा भी करदियां ते नाल जमीन दा भी फायदा करदियां जी। हवा दे विचों नाइट्रोजन लैके ना उह जड़ां दे राहीं जमीन च जज्ब कर दिंदियां ने,
0: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
1: हाँ,
0: ये वो साब है,
1: नाले फसली भिन्नता हो जांदी, नाले
0: फसली भिन्नता। देखो वड्डी गल तां इह है कि अज जन मानस नूं सोचण दी इह लोड़ है कि जे साडी इह नसल इत्थे इस धरती दे उत्ते दी होंद कायम रख आपां ने रखणी है ते जो कुछ अज चल रिहा है इह संधु साहिब इहचों सानूं बाहर जाणा पऊ।
1: इह तां पक्की गल है कि असीं जिहड़ा इक्को तरां दी खेती नहीं करनी।
0: हाँ,
1: कि जे असी

हुण तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम खेतीबाड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

हुण तो थोड़ी देर बाद सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे जानकारी ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर। सवेरे 8:40 ते प्रोग्राम पेश कीता जावेगा महक पंजाब दी। इस प्रोग्राम विच तुसी पंजाबी फिल्मां चो लए गए गीत सुन सकोगे। गाता रहे मेरा दिल इस प्रोग्राम दा समा रहेगा सवेरे 9:02। अज दे इस प्रोग्राम विच एक संगीत निर्देशक दे गीत सुनवाए जाणगे ते अज दे संगीत निर्देशक ने उषा खन्ना। सुर साधना शास्त्री संगीत दा ए प्रोग्राम प्रसारित कीता जावेगा सवेरे 9:30। अज दे इस प्रोग्राम विच तुसी गुलाम मुस्तफा खान वल्लों शास्त्री गायन ते राग रामकली सुनोगे। सवेरे 10:02 ते फोन इन प्रोग्राम हैलो फरमाइश लैके हाजिर होवांगे, जिस विच तुसी फोन कॉल करके अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत सुन सकोगे। धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम दा वेला रहेगा सवेरे 11:05। इस प्रोग्राम विच तुहाडियां व्हाट्सएप राही भेजियां गईयां फरमाइशां दे गीत सुनवाए जाणगे।

0: उक्तवान् यत् इदं प्राधिकरणं दशवर्षीय योजनावधिम् आधृत्य दीर्घकालिकं राष्ट्रिय परिवहन महायोजनापत्रं सज्जीकरिष्यति। सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन योजनायै शीर्ष संस्थारूपेण कार्यं करिष्यति। श्रीवैष्णव उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 कोटि रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारत घाना देशयोर्मध्ये वैज्ञानिकानुसन्धानस्य शैक्षणिक क्षेत्रस्य क्षमतावर्धनस्य कृष्यनुसन्धानस्य तथा शिक्षायाश्च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं द्वयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य घानायात्रायाः समये एतयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानम् अभवत्। डॉ जयशंकरस्य घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुजितो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घानादेशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचारविनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलम् 8 स्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं 5 स्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां 1-0 इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 7 बजे ने पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत ट्रांसपोर्ट अते लॉजिस्टिक अथॉरिटी दे गठन नूं मंजूरी दे दित्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरां नूं सेवा अते दया दी भावना नाल काम करन दा सद्दा दित्ता है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नूं हवाई फौज दा नवां मुखी नियुक्त कीता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय समुद्री फौज के जहाजों लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम अते लांचरां दी खरीद ली ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड नाल 660 करोड़ रुपए तो वध दे इकरारनामे ते दस्तखत कीते ने। बेल्जियम विच जन्मे विज्ञानी फ्रांसिस हालजेन नूं भौतिक विज्ञान विच नोबल पुरस्कार देन दा ऐलान कीता गया है। भारतीय खुराक सुरक्षा अते म्यार अथॉरिटी ने राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं आउण वाले त्योहारां दौरान मिलावटी अते असुरक्षित भोजन विरुद्ध विशेष मुहिम शुरू करन लई कहा है। पंजाब दे जल सप्लाई मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने 267 करोड़ रुपए की लागत नाल नहरी पानी आधारित बहुपक्षी जल सप्लाई स्कीम का अमृतसर च उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने पटियाला की अनाज मंडी विखे झोने की खरीद का लिया जायजा। सूबा सरकार ने बिल लियाओ इनाम पाओ मेरा बिल स्कीम विच एक होर साल दा वादा करन नू परवानगी दित्ती अते लखनऊ विच 5 2020 अंतरराष्ट्री क्रिकेट मैचां दी लड़ी दे पहले मैच विच भारत ने वेस्ट इंडीज नू 8 विकटां नाल हरा दित्ता है। ए सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले सवेर दे 7:02 होए ने। पेश है प्रोग्राम सोनी सवेर।

जसलीन कौर की आवाज़ च हुणे तुसीं सुनिया फिल्म डियर जिंदगी चो लिया गीत लव यू जिंदगी। प्रोग्राम शुरू हो गया जी सोहनी सवेर आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से। प्रोग्राम लैके हाज़र हो गई है जी तुहाड़ी दोस्त देविका। तुहानू सारिया नू प्यार भरी नमस्कार। भाई दोस्तों, ये सिर्फ गीत ही नहीं सगो जिंदगी नू एक नवे नज़रिए नाल देखन दा सुनेहा भी सी। जिंदगी नू प्यार करन दा फलसफा सिखाउंदा एक गीत सानू ये याद दिवाउंदा कि जिंदगी विच हर दिन इको जिहा नहीं हुंदा। कदे खुशी हुंदी है, कदे उदासी, कदे उम्मीद ते कदे चुनौतियां, ये सारियां चीज़ां इन्हां साडी जिंदगी दा हिस्सा ने। कई बार असी जिंदगी विच छोटियां छोटियां खुशियां नू भुल के आने वाले कल की चिंता करन लग पैंदे आं। तो इस चिंता विच ना दोस्तों असी अपना अज गवा बैठते हाँ। पर पता है सानू जिंदगी की कहती है? सानू जिंदगी साढ़े हर मोड़ ते यह सिखाती है कि भई थोड़ा रुक जाओ, साह लै लो, मुस्कुराओ, तो जिहड़ा तुहानू पल मिलिया ना यही वाला पल इसनू जी लो, क्योंकि यह पल जदों एक बारी बीत गया ना दोबारा मुड़ के नहीं आना। अक्सर असी वड्डियां खुशियां की उड़ीक विच छोटियां छोटियां खुशियां नू इंजॉय नहीं कर पाते। असी समझ ही नहीं पाते कि साड़ी असल खुशी रोज़ाना दे छोटे छोटे पलों विच लुकी हुंदी है। जिवें चाह दे शुकीना लई सवेर दी पहली चाह, किसे अपने प्यारे दी मुस्कान, अपना पसंदीदा गीत सुनना, किसे खास दा मैसेज आ जाना, वह भी उस वेले जदों उस दे आन दी कोई उम्मीद ही ना होवे। ते कई वारी तो खुशी इस चीज़ च भी हुंदी है कि तुसी अपनी पसंदीदा डिश तैयार कीती होवे ते उसकी हर कोई तारीफ करे। तो सब तो ज़्यादा खुशी ना ज़्यादातर लोगों नू उदों मिलती है जदों कोई बहुत पुराना जिहा सूट या शर्ट वजन घटाने तो बाद पूरी तरह फिट आ जाए। सो अजिहियां छोटियां छोटियां खुशियां मिलके जिंदगी नू खूबसूरत बनांदियां। तो बस फिर अपने आप नाल एक वादा करो कि हर गल नू परफेक्ट बनाउण दी कोशिश नहीं करनी, सगों जो कुछ तुहाडे कोल है उसनू दिलों महसूस करना है, क्योंकि जिंदगी जिहड़ी है ना कदे किसे प्लान मुताबक नहीं चलती, पर सानू हर मोड़ ते कुछ ना कुछ सिखाउंदी जरूर है। तो जिंदगी ये सिखाती है कि जिंदगी दे हर पल नू इंजॉय करना है। तो इस विचार दे नाल हुण प्रोग्राम विच तुहानू अगला गीत भी सुनवाना बनता है। प्रोग्राम च अगला गीत आ रहा जी गुरदास मान ते दिलजीत दुसांझ दी आवाज़ां च।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा सोहनी सवेर ते प्रोग्राम च हुणे तुसी सुनिया गुरदास मान ते दिलजीत दोसांझ दा गाया गीत। भाई दोस्तों कैलेंडर ते लिखी हर तारीख अपने अंदर इतिहास दी एक कहानी समोए बैठी हुंदी है। कदे कोई तारीख दुनिया नू नवी खोज दिंदी है ते कदे कोई घटना इतिहास बदल के रख दिंदी है। दोस्तों अज दी तारीख है 7 अक्तूबर ते आओ समय दी सुइयां नू पिछे मोड़ के जानिए कि अज दे दिन दुनिया विच की वापरिया सी। 7 अक्तूबर 1737 नू बंगाल विच 20,000 छोटे जहाजां दे समुद्र विच 40 फुट हेठां डुब जाण नाल 3 लाख लोकां दी मौत हो गई सी। साल 1940 विच अज दे दिन दूजे विश्व युद्ध दौरान रोमानिया जर्मनी दे कंट्रोल हेठ चला गया सी। 7 अक्तूबर 1942 नू अमरीका ते ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र दी स्थापना दा ऐलान कीता सी। अज दे दिन ही साल 1949 विच जर्मनी दे सोवियत कब्जे वाले खेतर विच अधिकारत तौर ते जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दा गठन होया जिसने पूर्वी ते पछमी जर्मनी दी वंड नू रस्मी रूप दिता। जे गल करिए साल 1950 दी तां अज दे दिन ही मदर टेरेसा नू कोलकाता विच मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरू करन दी इजाजत मिली। ए संस्था दुनिया भर विच गरीबां ते लोड़वंदां दी सेवा लई जानी जांदी है। साल 1953 विच अज दे दिन ही भारत दे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ दा रस्मी उद्घाटन कीता ते 1959 विच अज दे दिन सोवियत पुलाड़ यान लूना 3 ने चंद्रमा दे उस पासे दियां तस्वीरां धरती तक भेजियां जिसनू धरती ते सीधे तौर तक देखना संभव नहीं सी। 7 अक्तूबर 1992 नू भारत विच रैपिड एक्शन फोर्स दा गठन किया गया सी ते साल 2004 विच अज दे दिन ही जर्मनी ने सुरक्षा परिषद विच भारत दी दावेदारी दा समर्थन किया। सो दोस्तों ए तां सी अज दा इतिहास ते हुन वेला हो गया तुहानू प्रोग्राम च अगला गीत सुनवान दा। प्रोग्राम दा अगला गीत सतिंदर सरताज दी आवाज़ च।

0: के आईएफएस ने, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने हिल एरियाज दे, ते इदे नाल नाल वो डायरेक्टर टूरिज्म पंजाब भी ने। आओ इस विषय ते उन्हां दे नाल विचार सांझे करते हैं। संजीव तिवारी जी, साडे प्रोग्राम च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। ते साडे सुनण वालियां नूं दसो जी कि जिहड़े जी जंत ने, जंगली जीव ने, इह साडी कुदरत लई, साडे वातावरण लई किन्ने क जरूरी ने जी, किन्ने महत्वपूर्ण ने।
1: देखो, पहले मैं सारे नूं वाइल्ड लाइफ वीक ते बहुत बहुत बधाइयां देना। असीं 2 तारीख तो लेके 7 तारीख तक जरा वाइल्ड लाइफ वीक सैलीब्रेट कर रहे हैं। जरा साडा जरा वाइल्ड लाइफ वीक सैलीब्रेट करन दा जरा मेन जरा उद्देश्य ही है कि लोगों नूं जरा वाइल्ड लाइफ है जिहड़ी अपनी बायोडायवर्सिटी है, जिथे मतलब फ्लोरा एंड फौना दोनों ही आंदे, उन्हां दे बारे लोगों नूं जागरूक करना है। क्योंकि देखो, जदों तक लोगों नूं मतलब जानवरों के बारे, वाइल्ड लाइफ के बारे में जदों तक पता नहीं चलेगा, उस तो फिर उसकी कंजर्वेशन की उन्होंने भावना उत्पन्न नहीं होगी अंदरों। तो इस करके साडा मेन मकसद इस वाइल्ड लाइफ वीक सैलीब्रेट करने का होता है कि लोगों को वध तो वध वाइल्ड लाइफ से रिलेटिड उन्हों का हैबिटेट, उन्हों का जरा फूड हैबिटेट है, फूड जो चॉइस है, उस सारे के बारे में जानू करवाना है
0: जी। संजीव तिवारी जी, आम तौर पर असं देखते हैं कि साउथ के खेत्र ने जां गुजरात के खेत्र ने जिथे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा वेखी जाती है, पंजाब विच इहदी वाइल्ड लाइफ बारे तुसीं किद्दां महसूस करते हो जी, किद्दां दी वाइल्ड लाइफ है पंजाब के जंगलों च?
1: अगर देखा पंजाब दी वाइल्ड लाइफ की गल करिए, उस तो पहला मैं पंजाब का जरा हैबिटेट मैं तुहानू दसना चाहूँगा। देखो, पंजाब एक्चुअली प्लेन इलाका है। पंजाब 84% एरिया अंडर एग्रीकल्चर है। पंजाब से फॉरेस्ट सिर्फ 6% है, 6.7% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। जिथे फॉरेस्ट होता है उत्थे ही वाइल्ड लाइफ होती है। फॉरेस्ट चूंकि पंजाब का काफ़ी कट है कि क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेंस है, जो आप हिमाचल डिवाइड होया 1966 तो ज्यादा जरा पहाड़ी क्षेत्र है वो हिमाचल को चला गया, पंजाब को जरा प्लेन एरिया है वो रह गया। पंजाब का जरा कंडी एरिया है पठानकोट तो लेके जरा मोहाली रोपड़ तक है, इसी एरिया से ही मतलब वाइल्ड लाइफ की मतलब नंबर ज्यादा है। अगर पंजाब वाइल्ड लाइफ इन जनरल अगर गल करिए, मेजर जो बिग कार्निवोर्स ने उसे लेपर्ड है कि साडे कोल, वाइल्ड डॉग्स है, जरा हर्बीवोर्स की गल करिए तो ब्लू बुल है, जरा नील गाय है, जरा अपना पीकॉक्स बहुतेरे नंबर से है, जरा रेप्टाइल्स ने, जरा बर्ड्स हैगी। तुसी देखो अपने कोल अगर वाइल्ड लाइफ इनसेट जनरल एरिया की जरा जिसनों असी प्रोटेक्टेड एरिया भी कहने हैं, साडे कोल 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैगी, 1-3 जू हैगी साडे कोल, 1 कंजर्वेशन रिजर्व है, 1 कम्युनिटी रिजर्व है। तो सारा जरा जो टोटल परसेंटेज है जरा प्रोटेक्टेड एरिया अगर टोटल जंगल अगर मुकाबले अगर करिए तो तकरीबन 4% हैगी। लेकिन इतना एरिया कट होने के बावजूद भी साडे कोल वाइल्ड लाइफ सफिशियंट मात्रा से हैगी। असी तुसी सुनिया होगा हरीके हैगी, हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैगी साडे कोल, हरीके एक रामसर साइट है जिथे वेटलैंड है, 86 स्क्वायर किलोमीटर जरा एरिया है वो पानी हेठ आएगा। और इतने अपना जरा विंटर्स ने इंटर्स में सारे काफी मतलब लख तो बद मतलब इतने माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो हर इत अपने साडे कोल डॉल्फिन ने, इंडस रिवर डॉल्फिन ने। तो साडे कोल अगर देखा बायोडायवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ देखा जाए तो साडे कोल काफ़ी हैगी, और इसनों असी डिपार्टमेंट वालों काफ़ी इसनों प्रिजर्व भी कर रहे हैं। असी लोगों को यही हैगी मतलब साडा वेलकम हैगी, तुसी अपने वाइल्ड लाइफ एरिया च आओ। और पंजाब विच देखो तुसी वाइल्ड लाइफ, तुसी अपने तुसी ऑटर्स देखा हो तो गुलाब जड़ा हैगा हरीके का वाइल्ड हैबिटेट है, तुसी इंडस रिवर डॉल्फिन देखो। तो साडे कोल बहुत सारे चीज़ें हैगी जो असी दिखा सकते हैं और लोगों को जागरूक करा सकते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे
0: जी। और संजीव तिवारी जी, तुसी नाल टूरिज्म भी देख रहे हो, आईएफएस भी हो, तो तुसी की महसूस करते हो जी कि जिस तरह गुजरात विच गीर इलाके च लोकी शेर या लॉयन सफारी वेखण जांदे ने, उदा इको टूरिज्म पंजाब विच भी हो सकता है? वाइल्ड लाइफ नू देखण भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज है जी उन्हां लई?
1: जी बिल्कुल जी, अभी पिछले 2-3 साल से असी वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र से काफ़ी काम किया है और इको टूरिज्म के क्षेत्र भी काफ़ी काम किया है। तुसी देखो पठानकोट से असी एक मिनी गोवा बनाया है, उत्थे एक वाटर बॉडी है रणजीत सागर डैम है, वो जो अपना नेचर दी तीर्थ हैगा, उत्थे अवेयरनेस कैंप हैगा, वो काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी लोग जानते हैं। तो उत्थे काफ़ी वाइल्ड लाइफ भी हैगी, उत्थे लेपर्ड्स भी कदे कदे आ जाता है, उत्थे डियर की काफ़ी स्पीसीज है, उस तो अलावा बर्ड्स की काफ़ी स्पीसीज है। उस तो अलावा होशियारपुर से अपने 2 थावां से कीती इको टूरिज्म शुरू की है, पहला नेचर दी तीर्थ चौहा लगा, उत्थे असी जंगल सफारी कराते हैं, जिस तरह तुसी गल की गिर से जाते हैं या कॉर्बेट से जाते।

0: जंगल सफारी है, बहुत सारे लोगों को जंगल सफारी राही उन्होंने लेपर्ड भी साइट हुआ है। तो पंजाब मतलब काफी रेयर है, लेकिन हम दिख रहे हैं काफी नंबर भी इतने होशियारपुर एरिया काफी लेपर्ड के नंबर बढ़ भी गए। इस तो अलावा जो डियर स्पीसीज है जो सांभर हैगा, हॉक डियर है, बार्किंग डियर है, इधर भी नंबर काफी बहुत रहे। जनरल सफारी हमेशा ही लोगों को दिख जाता है। तो इस तो अलावा जो हम असी सिसवा च सिसवा जरा चंडीगढ़ के नेड़े एरिया उत्थे भी नेचर अवेयरनेस कैंप किया है, उत्थे भी अपना नेचर ट्रेल बनाया है, उत्थे बर्ड वॉचिंग का भी है, इतने भी बहुत सारे जंगली जानवर असी दिख जाने हैं, उत्थे कम्युनिटी रिजर्व है, इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया है। इस तो अलावा जो हरीके में पहले भी गल की हरीके ची डॉल्फिन नो असी प्रपोज कर रहे हैं कि बोटिंग शुरुआत की जाए, इको टूरिज्म और बढ़ावा देने कि उत्थे डॉल्फिन सफारी शुरुआत की जाए। इस तो अलावा मैं कह के बड़ी खुशी हो रही है कि असी जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसनु असी सोच रहे हैं कि जो रावी नदी है, ब्यास तो अलावा रावी नदी है, उत्थे भी हैबिटेट चूंकि सिमिलर है, उत्थे गैंगेटिक डॉल्फिन का भी उत्थे लाने का प्रपोजल है। असी फिजिबिलिटी स्टडी वास्ते आप डबल्यू आई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी लिख रहे हैं, अगर जो फिजिबल हो गया तो असी लोगों को पठानकोट एरिया रावी नदी से जो डॉल्फिन है वो भी दिखावेंगे, डॉल्फिन सफारी भी कराएंगे। तो इस तरह अगर टोटल इंटायरली अगर देखा जाए तो इको टूरिज्म विथ रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ एरिया साढ़े को काफ़ी स्कोप है और काफ़ी सरकार इस तरह काफ़ी उपराले भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम कर रही है।
1: संजीव तिवारी जी, इत्थे एक होर गल आ जाती है कि जेडे टूरिस्ट ने जेडे सैलानी ने वह इन चीज़ों वेखण आते हैं, उन्हों की एक जिम्मेदारी भी बनती है जदों भी वो जंगल सफारी करते हैं कि जंगल साफ सुथरे रहन। सो तुसीं उन्हां नूं की सुनेहा देना चाहोगे कि जेडे भी सैलानी आउण वह वाइल्ड लाइफ के प्रति जंगलों के प्रति किन्ने क संवेदनशील किन्ने क सेंसिटिव होण?
0: तुसीं बड़ी अच्छी गल कीता कि क्योंकि जिथे भी टूरिज्म हुंदा है उत्थे हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी जरा आस पास का एरिया है उसनों किवें वातावरण साफ रखना है, उसके गंदगी घट तो घट किए हुए, क्योंकि लोगों की हैबिटेट मतलब हैबिट होंगी है कि जिथे जाए कुछ कुछ फुटप्रिंट अपने छड़ देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल छड़ देते हैं। असी इसनों ध्यान से रखते हुए हर एक जो साइट है असं डेवलप कर रहे हैं उत्थे कैरिंग कैपेसिटी असं कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस थान की कितना लोगों की टूरिस्ट की आन की कैपेसिटी हैगी, उसनों असं कैलकुलेट करके अगर उस कैपेसिटी तो बद उस एरिया का बद अगर टूरिस्ट आ जाए तो उन्होंने बाहर ही असं रोकते रहें। और साडा ये मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी तो वध टूरिस्ट ना जाए ताकि उस एरिया जरा उसको सस्टेन कर सकी, उत्थे जरा प्लास्टिक का उत्थे होर जरा एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है उसनों असी रोक सकी। असी प्लास्टिक नू अपने सारे साइटा तो प्लास्टिक नू बैन किया है। तो मेरी तुहाडे राही मतलब सारे जनता नू मतलब यही अपील है कि तुसी जिथे भी जाओ तुसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एज ए सिटीजन, क्योंकि देखो अपने संविधान से भी लिखा है इट इज द ड्यूटी एंड राइट इट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। तुसी जिथे जाओ अगर तुहानू कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसनों जरूर रिस्पॉन्सिबल एज ए सिटीजन राही उसको मेनटेन करो, गंदगी ना फैलाओ और अपने वातावरण को साफ सुथरा रखो। और जरा जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जिन्होंने करने हैं वो जरा उसका तुम एज ए नागरिक होगा उसके फर्ज बनाओ
1: जी। संजीव तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी साढ़े नाल गलबात करन लई, और असी आस करते हैं कि ईको टूरिज्म नूं पंजाब विच होर वधावा मिलेगा और साडी जिहड़ी सेंसिटिविटी है संवेदनशीलता है जंगलों के प्रति वो होर ज़्यादा वधेगी। बहुत मेहरबानी जी।

प्रोग्राम चल रहा जी सोनी स्वेर प्रोग्राम विच हुणे तुसी सुनिया फिल्म थ्री इडियट्स चो लिया गीत जिसनू आवाजा दितियां सी सोनू निगम स्वानंद किरकिरे ते शान ने। भाई दोस्तों असी पानी बचाने की अक्सर गल करते हैं पर इस बारे कोई खास ज़्यादा लोग ना सीरियस नहीं होंगे। पानी जड़ा ना वो एक कुदरती स्रोत ही नहीं है सगों साड़ी जिंदगी की बुनियादी लोड़ है। तो जो साफ पीन वाला पानी घर की दलीज तक पहुँचता है ना तो सिर्फ एक नल नहीं होंदा, ये सेहत ते सहूलत ते बेहतर जीवन वाल एक कदम होंदा है। इस उद्देश नाल अगस्त 2019 विच शुरुआत की गई सी जल जीवन मिशन हर घर जल दी। इसका मुख्य उद्देश पेंडू घर तक कार्यशील घरेलू नल कनैक्शन राही सुरक्षित पीन वाला पानी पहुँचाना है। यह मिशन स्कूलों आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायतों ते सेहत केंद्र वर्गिया जनतक संस्थावां तक पानी की जरूरतों नूं महत्व दिंदा है। इस दे नाल ही पानी की जांच लई स्थानक लोगों नूं फील्ड टेस्ट किट वरतन दे सिखलाई देना भी यकीनी बनाना इसका उद्देश है। पिंडां विच ग्राम पंचायतों ते विलेज वाटर एंड सैनीटेशन कमेटियां जिन्हां नूं पानी समितियां भी कहा जांदा है पानी की योजना प्रबंधन संचालन ते रख रखाव विच भूमिका निभाउंदियां है। जल जीवन मिशन की शुरुआत नाल फायदा की होया, इस दे नाल औरतां ते बच्चियां नूं दूर दूर तो पानी ढोन की जिहड़ी मशक्कत करनी पैंदी सी ना उस तो मुक्ति मिली है। नाल ही दूषित पानी नाल होण वालियां बीमारियां च भी काफ़ी कमी आई है ते पिंडां ते शहरां दे रहन सहन का म्यार भी सुधरिया है। दोस्तों सरकार की योजनावां अपनी थां महत्वपूर्ण ने पर पानी की संभाल जिहड़ी है ना साडी जिम्मेदारी है, इसलिए इस गल का ध्यान रखो कि घर विच नल खुला ना छड्या जाए। लीकेज अगर हो रही है तो उन्हें उस वेले ठीक करवाया जाए, बारिश का पानी संभालिया जाए तो सब तो वध पानी नू संभालिया जाए क्योंकि अज का बचाया पानी ही जड़ा है ना कल की जिंदगी नू सुरक्षित करेगा।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ, 8:15 ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
3: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
4: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
3: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है।

0: है। गोवा के कैप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
1: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
0: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
3: इन कार्यों को 4 विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3

0: के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोर्वोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1%

0: Literary legacy, and with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat Ji Ramji scheme, marking 41% expansion from the previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
0: Namaskar. ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सरकार दे मुखी वजो 25 साल पूरे कर रहे ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस इतिहासक प्राप्ति ते मता पास कीता। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस तो पहला ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड मैंबर नाल गलबात की थी। कहा तकनोलॉजी समावेशी निरंतर रहने योग विकास लिए एक साधन बनना चाहिए है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री ते ओएसटीए ते उन्हां दे साथियों विरुद्ध नकदी बदले तबादले ते भ्रष्टाचार के होर मामलों में एफआईआर दर्ज की थी ते छापेमारी की थी। भारतीय रिजर्व बैंक अज अपनी दिमाही माली नीति का ऐलान करेगा ते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्मृति मंधाना नूं भारत की औरतों की क्रिकेट टीम का नवा कप्तान नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सरकार दे मुखी वजों 25 साल पूरे करन लई वधाई देण वाला मता पास कीता है। श्री मोदी ने अज दे ही दिन यानी 7 अक्तूबर 2001 नूं गुजरात मुख्यमंत्री वजों अहुदा संभालिया अते फिर 2014 विच प्रधानमंत्री बने अते अज ओह सरकार दे मुखी वजों 25 साल पूरे कर रहे ने। सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा 25 साल दा कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र दी मजबूती दा प्रमाण है। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजिहा इतिहास रचा है जो किसी भी लोकतंत्री देश विच विलक्षण है। उन्होंने कहा कि दुनिया विच बेहद घट देश ने जिथे लोगों ने वार वार एक ही नेता नूं अपनी हमायत दिती है। मंत्री ने कहा कि यह हमायत उन्हां दी कार्यशैली उन्हां दीआं सही नीतियां अते उन्हां दे स्पष्ट अते चंगे इरादियां कारण दिती गई है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: श्री वैष्णव ने इस कैबिनेट मते दे 10 मुख नुक्तों नूं उजागर कीता। पहला नुक्ता गुजरात तो पूरे देश विच विकास से दृष्टिकोण दा पसारे। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपने प्रोग्रामां ते नीतियां राहीं गुजरात विच कई बदलाव लियांदे जिस लई श्री मोदी नूं दुनिया भर विच सम्मानित कीता गया। गुजरात मॉडल नूं दुनिया भर विच मानता ते प्रशंसा मिली अते बाद विच पूरे भारत विच लागू कीता गया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार अते आजीविका मिशन VBG रामजी तहत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की थी। नवी सूची विच कुल 375 काम शामिल ने। पिछली योजना विच 266 काम सन। ये करीब 41% का वाधा दर्शाता है। इन्हां कामों च नूं चार मुख हिस्सों विच वंडिया गया। पहला पानी सुरक्षा है जिस विच सब तो वध 128 काम ने। इन्हां विच चेक डैम बनाउणा, पानी दे वसीलियां नूं सुधारना, दरियावां ते नालियां नूं मुड़ सुरजीत करना अते पानी वंड प्रणालियां वर्गे काम शामिल ने। दूजा हिस्सा देहाती बुनियादी ढांचा है जिस विच 111 काम कीते जाणे ने। तीजे हिस्से विच रोजगार अते आजीविका बुनियादी ढांचे नाल संबंधित 98 काम शामिल ने। पहली बार आफत की तैयारी अते अत दे मौसम प्रति प्रबंध दी 38 काम वखरे तौर ते शामिल कीते गए ने। सरकार मुताबिक इस नवी योजना दा उद्देश देहाती खेतरां विच रोजगार प्रदान करना है। सारे काम पिंड पद्धर ते तैयार कीते जाणगे। ग्राम सभा दी प्रवानगी तों बाद इन्हां नूं विकसित ग्राम पंचायत योजना तहत लागू कीता जाएगा।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस का दसवां एडिशन अज नवी दिल्ली ते विश्व भूमि में शुरू हो रहा है। इस साल इसका विषय सीमा रहित पसारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनालोजी नूं समावेशी अते निरंतर रहण योग विकास लई एक साधन बनना चाहिए है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस तो पहला प्रधानमंत्री ने कल सेवा तीर्थ विखे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसीएशन दे बोर्ड मैंबर नाल गलबात की थी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 10 अक्टूबर तक नवी दिल्ली विच होएगी। श्री मोदी ने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग पिछे ना रहे, इस नूं यकीनी बनाने लई तकनालोजी का लोकतंत्रीकरण जरूरी है। उन्होंने तकनालोजी अते डिजिटल सेवावां नूं किफायती अते पहुंचयोग बनाने की जरूरत ते जोर दिता। श्री मोदी ने घट विकसित अते विकासशील देशां विच वध रहे डिजिटल पाड़े नूं पूरा करने लई आखिरी मील तक पहुंचण की जरूरत ते भी जोर दिता। प्रधानमंत्री ने डिजिटल बुनियादी ढांचे की संभावना विकासशील देशों लिए एक परिवर्तनशील शक्ति दसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पैमला अज भारत मंडपम विखे दूजे भारत ईएफटीए खुशहाली सम्मेलन 2026 नूं संबोधन करेंगे। इस सम्मेलन भारत यूरोपियन आजाद व्यापार एसोसीएशन व्यापार ते आर्थिक भाईवाली समझौते की पहली वरेगंढ मौके कराया जा रहा है। यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल @AIRRNJalandhar। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री दे ओएसटी राजबीर घुमण अते उन्हां दे साथियों विरुद्ध आईएएस अते आईपीएस रैंक के अधिकारियों समेत अधिकारियों के नकदी बदले तबादले अते उन्हां दीआं पोस्टिंगां विच प्रभाव पाउण अते भ्रिष्टाचार के होर मामलों विच एफआईआर दर्ज कीती है तां जो इन्हां इल्जामां दी जांच कीती जा सके। इस बार चंडीगढ़ मोहाली गुरदासपुर लुधियाना पटियाला संगरूर अते जलंधर विच उन्हां नाल संबंधित 8 थावां ते छापेमारी कीती गई। लैपटॉप मोबाइल फोन अते दस्तावेज वर्गे अपराधिक सबूत जब्त कीते गए। इन्हां दी रिश्वतखोरी दे सबूतां लई जांच कीती जा रही है। जांच एजेंसी वल्लों यह कार्रवाई कल पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट तों संबंधित भ्रिष्टाचार केस सीबीआई नूं सौंपण तों बाद दित्ते गए हुक्मां दे मद्देनजर कीती गई है। साडे जलंधर वाले पत्रकार ने अधिकारत हल्कियां दे हवाले नाल दस्सिया कि 6 व्यक्तियां जिन्हां विच 2 सरकारी सेवक विचोले ते सहयोगी शामिल ने, जिन्हां विच ओएसटी कुमण भरा नितिन गोयल अते जतिन गोयल, रोमी राजा महाजन, वीर दविंदर, आर एस नागरा ते कुछ होर अणपछाते सरकारी सेवक अते निजी व्यक्ति शामिल ने विरुद्ध मामला दर्ज कीता गया है। होर जांच जारी है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सीबीआई की कार्रवाई की निखेधी की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने केंद्र ते उन्हां दी सरकार नूं बदनाम करन लई एजेंसी की दुरवरतों करन दा इल्जाम लाया। भारतीय रिजर्व बैंक अज अपने दिमाही माली नीति का ऐलान करेगा। कई माहरां दा मनना है कि पश्चिमी एशिया विच टकराव कारण वध रहे महंगाई दबाव नूं देखते हुए ब्याज दरां करीब 3.5 सालां बाद वध सकदियां ने। आखिरी रेपो दर वादा फरवरी 2023 विच होया सी, जदों आरबीआई ने दर नूं 0.25% वधा के 6.5% कर दित्ता सी। जम्मू कश्मीर के उत्तरी कमान के फौज कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने काराकोट और राजौरी सैक्टर का दौरा करके संचालन तैयारियों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में फौज ने कहा कि फौजियों ने उन्होंने मुख संचालन तैयारी उपावों बारे जानकारी दी, जिस विच चौकसी, सिखलाई, तालमेल अते कंट्रोल रेखा के नाल नाल अते अंदरूनी इलाकों विच सुरक्षा बनाई रखने लिए अपनाए गए नवीनताकारी ढंग तरीके शामिल ने। फौजियों नाल अपनी गलबात दौरान फौज कमांडर ने उन्हां दे पेशेवर रवैये ते समर्पण की शलाघा की थी। भारत ने पहले 2020 मैच विच वेस्ट इंडीज नूं 8 विकटां नाल हराया। बीती रात लखनऊ विच पहला बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने 19 ओवरां दे गेंद विच 171 दौड़ां बनाईआं। भारत लई नमनधीर ने 3 विकटां लईआं, जदों कि अक्षर पटेल अते कुलदीप यादव ने 2-2 विकटां लईआं। भारत ने 172 दौड़ां दा टीचा सिर्फ 14 ओवरां अते 4 गेंदां विच 2 विकटां गुआ के हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर 102 अते ईशान किशन 37 दौड़ां बना के नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर नूं प्लेयर ऑफ द मैच चुनिया गया। इस जित दे नाल भारत ने 5 मैचां दी लड़ी विच 1-0 दी लीड बना ली। लड़ी दा दूजा मैच शुक्रवार नूं रांची विच खेडिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने स्मृति मंदाना नूं भारत की औरतों की क्रिकेट टीम का नवा कप्तान नियुक्त किया है। ओ हुण भारत के फुल टाइम वाइट बॉल कप्तान वजों जिम्मेवारी संभालणगे। उन्हां दी नियुक्ति हरमनप्रीत कौर के तीनों फॉरमैट्स विच भारत की कप्तानी छड्डण तों बाद होई है। आखिर च खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के मुखी वजों 25 साल पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल

0: इस इतिहासक प्राप्ति थे मदापास की था। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी तहत किए जाने वाले कम्मा दी सूची जारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस तो पहला ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन दे बोर्ड मेंबरां नाल गलबात की थी कि हाँ टेक्नोलॉजी नो समावेशी अति निरंतर रहने योग विकास लिए एक साधन बनना चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के ओएसडी और उनके साथियों विरुद्ध नकदी बदले तबादले और भ्रष्टाचार के होर मामलों में एफआईआर दर्ज की थी ते छापेमारी की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्मृति मंदाना नु भारत की औरतों की क्रिकेट टीम का नवा कप्तान नियुक्त किया है। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होगा। नमस्कार।
1: वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर दे 8:40 होए ने ते हुण वेला प्रोग्राम महक पंजाब दी दा।

प्रोग्राम शुरू हो गया है जी। प्रोग्राम शुरू हो गया जी, महक पंजाब दी ते प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म तेरी मेरी एक जिंदड़ी चो लए इस गीत दे नाल जिसनू गाया नरेंद्र बीबा ने।

इस गीत तो बाद पेश है प्रोग्राम दा आखरी गीत फिल्म असानु मान बतना चू हरभजन मान दी आवाज़ च।

ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज भारत मंडपम विखे दूजे भारत ईएफटीए खुशहाली शिखर सम्मेलन 2026 नूं संबोधन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सरकार दे मुखी वजों 25 साल पूरे करन ते वधाई देन वाला एक मता पास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के दौरे ते ने। कल उन्हें बिलासपुर एम्स के पहले कन्वोकेशन विच होनहार विद्यार्थियों नूं मैडल अते डिग्रियां प्रदान कीतियां। सरकार ने विकसित भारत रोजगार अते आजीविका मिशन देहाती कानून 2025 तहत आग्ञा प्राप्त कम्मां दी सूची नूं नोटिफाई कीता। नवे देहाती कार्य ढांचे तहत कुल 375 कम्मां दी आग्ञा दित्ती गई। भारतीय खुराक सुरक्षा अते म्यार अथॉरिटी ने राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं आउण वाले त्योहारां दौरान मिलावटी अते असुरक्षित भोजन विरुद्ध विशेष मुहिमां शुरू करन लई कहा है। पंजाब दे जल सप्लाई मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने 267 करोड़ रुपए की लागत वाली नहरी पानी आधारित बहुपक्षी जल सप्लाई स्कीम का अमृतसर च उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने पटियाला की अनाज मंडी विखे झोने की खरीद का लिया जायजा। सूबा सरकार ने बिल लियाओ इनाम पाओ मेरा बिल स्कीम विच एक होर साल का वाधा करन नूं प्रवानगी दित्ती। भारत ने पहले T20 मैच विच वैसट इंडीज नूं 8 विकटां नाल हराया। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:02 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਤਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਊਸ਼ਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं तुहाडी दोस्त देविका दी प्यार परी नमस्कार। भाई दोस्तों, संगीत दी दुनिया विच कुछ अजिहे नाम हुंदे ने जिन्हां दियां धुनां समां बीतण दे बावजूद दिलां विच अपनी थां बनाए रखदियां ने। अज असीं गल कर रहे हैं एक अजिही ही शख्सियत दी जिसने उस दौर विच फिल्मी संगीत दे खेतर विच अपनी पछाण बनाई जदों ये मैदान मुख तौर पर पुरुष संगीतकारां दे हाथ विच सी। जी हाँ, अज दी साडा संगीत सफर जिहड़ा है ना वह समर्पित है संगीत निर्देशिका उषा खन्ना नूं। उषा खन्ना का जन्म 7 अक्तूबर 1941 नूं ग्वालियर विच होया। बचपन तो ही उन्हां दा रुझान जिहड़ा ना संगीत वल सी। उन्हां ने अपनी मेहनत लगन ते प्रतिभा दे बल ते हिंदी फिल्म संगीत विच अपना विलक्खण मुकाम बनाया। वो भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दी तीसरी महिला संगीत निर्देशक सी। उस तो पहला जद्दन बाई ते सरस्वती देवी फिल्म इंडस्ट्री विच बतौर संगीतकार अपनी थां बना चुकियां सन। ते उषा खन्ना भी बहुत ज़्यादा कमर्शली सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा सफल संगीतकारां दे विच्चों एक ने। उन्हां दे बहुत सारे गीत जिहड़े ने अज भी गुनगुनाए जांदे ने। उन्हां दे करियर दी शुरुआत 1959 विच आई फिल्म दिल दे के देखो दे नाल हुई। इस फिल्म दे संगीत ने उन्हां नूं फिल्मी दुनिया विच पछाण दवाई ते एक नवी महिला संगीतकार वजों उन्हां दा नाम उभर के सामने आया। हाँ, फिर प्रोग्राम की शुरुआत च सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म दिल दे के देखो का एक गीत।

भाई दोस्तों, संगीतकार उषा खन्ना ने अक्सर अपने तैयार किए गीतों विच अरेबिक म्यूजिक यानी अरबी संगीत तो प्रेरणा लिती, जो कि उन्होंने बहुत पसंद सी। हालांकि उन्होंने कई कदे भी किसी अरबी गीत नू सीधा कॉपी करके कोई गीत तैयार नहीं किया। वो अक्सर उन्होंने अपनी कई इंटरव्यूज ये गल मनी भी है कि उन्होंने अरेबिक म्यूजिक काफ़ी पसंद सी, इसीलिए उन्होंने उस तो गीत तैयार करते हुए प्रेरणा जरूर लई सी। ते इस तो अलावा वो बतौर प्लेबैक सिंगर भी

फरमाइश प्रोग्राम शुरू हो गया जी। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम लेके हाजिर हो गई है जी तुहाडी होस्ट ते दोस्त देविका। भाई दोस्तों तुहानू सारयां नू पता है कि इस प्रोग्राम विच तुसी सुन सकदे हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत, ते इसलिए करना की है वह भी तुहानू सारयां नू पता है, पर जिहड़े साडे नाल नवें लिसनर्स जुड़े हैं उन्होंने दस देना जरूरी है। मैं इसलिए तुसी चुकना फोन ते मिलाना है नंबर। जी हाँ नंबर तुहानू मैं दस दी हाँ, साडा नंबर है जी 2342173। ये नंबर मिला के पहुँच जाना तुसी साडे स्टूडियो, साडे नाल करनियां गल्लां बातां, ते सानू दसना अपना पसंदीदा गीत, जिहड़ी फरमाइश असीं पूरी करांगे। ते जिहड़े कॉलर जलंधर तो बाहरों कॉल लगा रहे ने ना, वह कॉल करन तो पहला जलंधर का एरिया कोड लगाना ना भुलन। जलंधर का एरिया कोड है 0181। ते गल फिर इंतजार किस गल दा, चुक लो फोन ते मिलाओ नंबर, ते जदों तक साडे कोल प्रोग्राम दे पहले कॉलर पहुँचते हैं ना, आओ फिर फिल्म पीकू चो श्रेया घोषाल ते अनुपम रॉय की आवाज़ों च गाया एक खूबसूरत गीत सुनिए।

0: प्रोग्राम हैलो फरमाइश च हुणे तुसी सुनिया फिल्म पीकू चोलिया गीत ते इस गीत तो बाद प्रोग्राम दे साडे पहले कॉलर हैं जिहड़े ओह वी साडे नाल जुड़ चुके ने आओ जानदे हां कौन आए ने कित्थों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने हैलो
1: हांजी गुरमेल सिंह बोल रहे जी
0: गुरमेल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच की हाल चाल ने कित्थों बोल रहे हो गुरमेल जी
1: असीं वी सस्ते जिले तो बोलते हरियाणे तो बोल रहे
0: हैं जी हरियाणे चो सिरसा तो जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच की हाल चाल ने गुरमेल जी
1: ठीक है जी वधिया है जी मुड़ते तो फोन लगा जी मैं तो देखता नहीं मैंने जवाकों को मसल आया मैं तो अन्ना बंदा तीन चार साल हो गए निगाह उठ गई मेरी
0: ओ अच्छा ते तुसी प्रोग्राम सुनते रहते हो रेडियो दे
1: मैं सुनते रहना जी
0: अच्छा प्रोग्राम नाल जुड़े हुए हो साडे खुशी झलक रही है फोन मिलन दी जी देखो रेडियो दा जड़ा साथ है संगीत दा जड़ा साथ है वो तुहाडे नाल बनिया होया है मतलब तुसी सानू अपनी पसंद दा गीत सुनान ली कहा ते प्रोग्राम च फिर तुहानू सुनवाने आ जी मोहम्मद अजीज दा गाया एक गीत फिल्म स्वर्ग चो लिया हुआ उम्मीद है तुहानू पसंद आएगा बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई
1: धन्यवाद जी

0: सभी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल बहुत जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: जिस तरह तुम्हें पता ही है कि झोने की जी खरीद है वो 1 अक्टूबर

0: लता मंगेशकर ने गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश से साडे अगले कॉलर भी साडा नंबर 2342173 मिला के साडे कोल आ पहुंचे ने। आओ जानदे आं कौन आए ने, कित्थों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हैलो
1: हैलो
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: सत श्री अकाल
0: जी, कौन बोल रहे ने?
1: जिला फाजिलका दे विच पैंदा पिंड कड़ियाणे तो बोल रहे जी, नीला बराड़।
0: कड़ियाणे तो नीला बराड़ जी,
1: हां जी
0: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया भैन जी, बहुत वधिया, कृपा बाबे श्री जांदी जी।
0: जी जी, ते होर सुनाओ अज केड़ी फरमाइश लेके आए हो, केड़ा गीत सुनवा दिए?
1: बाजीगर फिल्म दा सुनना जी अज।
0: बाजीगर फिल्म दा केड़ा गीत?
1: यही ला दे जी, बाजीगर ओ बाजीगर।
0: बाजीगर फिल्म दा टाइटल सॉन्ग सुनना। लो जी ये गीत आएगा तो हाडे रेडियो सेट ते बस एक छोटे जे अंतराल तो बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करन ली।
1: ठीक है भाई जी, एक टाइम ना बदलो, यही रहन दो ही 10-11 वाला
0: जी। जी जी जरूर, टाइम हजे से नहीं बदल रहे जी प्रोग्राम दा, तुसी तसल्ली दे नाल इस टाइम च अपनी कॉल मिलाया करो ते अपने पसंदीदा गीत सुनिया करो जी।
1: ठीक है जी, धन्यवाद भाई जी,
0: शुक्रिया जी कॉल करन ली।
2: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वो 1 अक्तूबर

0: लता मंगेशकर दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साडे अगले कॉलर भी साडा नंबर मिला के पहुंच गए ने। आओ जानदे आ कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो
1: देवका बहन जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: मैं जी कल वाला अमरकोट तो चंद्रपाल डल बोलदा जी।
0: चंद्रपाल जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल है?
1: ठीक है मेरी बहन, साडा भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी।
0: जी जी
1: सारे दोस्त कट्टे हो गए, बाबा पूरन, बाबा नारायण, बाबा भगत कट्टे हो गए, प्रोग्राम सुनने आ साडा।
0: जी जी बहुत वधिया, ते कट्टे हो गए तुसी सारे सुनदे हो, ते हुन अज फरमाइश दस दो केड़ी पूरी करदी है, केड़ा गीत
1: जी? रफी साहब दी फिल्म है जी, मेरे हमदा मेरे दोस्त
0: जी,
1: आवाज है रफी साहब दी, हुई शाम उनका ख्याल आ गया।
0: लो जी ये गीत जरूर आएगा तो हाडे रेडियो सेट ते, पर एक छोटे जे अंतराल तो बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करन ली,
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहने।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ। साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर वे नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: और फिर मैंने जो सीखा वो अनुभव आज तक काम आ रहा है। साथियों, वर्ष 2014 में देश ने मेरे दायित्व का विस्तार किया। प्रधान सेवक के रूप में सेवा का दायरा बढ़ा दिया और तब भी देश के सामने विकराल चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थी। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। देश का हर नागरिक नया रास्ता खोज रहा था। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने

0: थी, इट्स अ गॉन केस, इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 2001 में इसी दिन श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग टोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री टोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और अल्पविकसित तथा विकासशील देशों के लिए भी बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष का विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि कश्मीरी गेट और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी तट के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। इस हमले से टैंकर पर सवार 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम हिप 343.673 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेशे प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल

0: केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दर्शकों खबरदार, जे ब्रेकिंग न्यूज बनन तो बचना है तो पैसे भेजदे समय नाम अते रकम हमेशा दोबारा चेक करो।
2: आरबीआई कहंदा है किसे नु भी पेमेंट करदे समय थोड़ा ध्यान नाल।
3: जिस तरह तुहानू पता ही है के झोने दी जिहड़ी खरीद है ओ 1 अक्तूबर तो

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी ले सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वह 1 अक्तूबर तो शुरू हो चुकी है। मैं

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी लई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: जी बहुत ही खूबसूरत गीत सी ते प्रोग्राम चल रहा है वस्ते वेड़े ते आज खास दिन है बुधवार ते बुधवार नु एक खास वनगी लेके आंदे आ ओ हुंदी है जी शक्ति रूपा। ते आज जिस शक्ति रूपा दी असीं गल करन जा रहे हां ओ शक्ति रूपा ने दुर्गा देवी या फिर दुर्गा भाभी भी उन्हां नूं कहा जांदा है। ओ भारत दे स्वतंत्रता संग्राम च उन्हां ने बड़ा वड्डा अनमुल्ला हिस्सा पाया सी ते अज उन्हां दा जन्मदिन भी है ते सुनने आ अज गगन शक्ति रूपा दुर्गा देवी बारे सानू की संदेशा दे रही है।

गए। 204 इंडियन एपिक टीवी एंथोलॉजी टेलीविजन लड़ी अदृश्य दा सत्वां एपिसोड दुर्गा देवी ते ही बनिया है। 2022 डीडी नैशनल दी इतिहासिक टीवी लड़ीवार स्वराज विच वी दुर्गा देवी अते उना दे पति ते ही बनाया गया है। इस तो इलावा उना दे किरदार दा एक छोटा जिहा हवाला राकेश ओम प्रकाश मेहरा दी 2006 विच आई फिल्म रंग दे बसंती विच वी देखिया जा सकता है। दुर्गा देवी जी एक भारतीय इनकलाबी अते आजादी कुलाटन दे जीवन नू कोटी कोटी

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद

0: विप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेब 347.6 मीटर या 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। लो हुण तुहानूं दस दईए साडे इस मीटर तो अज रात तक के बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समय का वेरवा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनो, तू अजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
6: इस अंतराल तो बाद फज वीरो अहुन प्रोग्राम दे विच अगला गीत सुनते हैं। सत्यम जयते फिल्म दे विचों लिया, जोबिन नटियाल ते नीति मोहन दीआं आवाज़ां दे विच।
2: मैं ता टीका ला लिया।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाए। आरबीआई ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। उसने माली साल 2027-28 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 7.1% रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और आज भारत ने फिजी में कोप 31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तर इकदाम और पेरिस मुआहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और इसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने खुद को ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वो लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजर्बा हासिल हुआ है वो एक अजीम असासा है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि एक वक्त में पॉलिसी के मफलूज रहने पर मरकूज बातचीत अब भारत की बढ़ती ताकत और मज़ाहमत पर मरकूज है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12.5 साल गुजरात के वज़ीर आला और 12.5 साल वज़ीर आज़म की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन साल 2000 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वज़ीर आज़म बने थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और इसे सुनहरी और तारीखी दिन करार दिया है। गुरुग्राम में आज विकसित भारत संकल्प सभा

0: सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दफ़ा 370 की मनसूखी मानवाज़ियत का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला मेयार सतह तक पहुंचाने जैसी अहम हसूलियाबियां हासिल हुई हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुहिम के हिस्से के तौर पर मशल जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसके तहत नौजवान अफराद सेवा ज्योति यात्रा निकालेंगे और मुकर्रर मकामात पर मशल नस्ब करेंगे। जनाब शाह ने सभी से बड़ी तादाद में यात्रा में शिरकत की अपील की।
1: जब भी भारत का इतिहास

0: हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी ने गुजरात के सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का इनेकाद किया है। जनाब मोदी के आवामी खिदमत के 25 सालों में पहले गुजरात के वज़ीर आला और बाद में मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे का अरसा शामिल है। पूरे गुजरात में यात्रा निकलने के मकाम पर नई दिल्ली से विकसित भारत संकल्प सभा का वज़ीर आज़म का खिताब लाइव नशर किया गया, जिसके बाद मकामी लीडरों ने यात्रा के बाज़ाब्ता आगाज के तौर पर सेवा ज्योति जलाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब टेली मौसलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी इख्तरा के मैदान में खातिरखा पेशरफ्त को नुमाया करेगी। साथ ही इश्तराक, सरमायाकारी और मालूमात के तबादले का आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की शराकतदारी न सिर्फ आज के लिए की जा रही है बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए भी है। राजधानी अक्रा में घाना के फॉरेन सर्विस के इदारे में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सफारत को मुसाबिकती रुझान से इस तरह निमटना चाहिए कि ये मफादात में इख्तलाफात के बावजूद टकराव की शक्ल अख्तियार न करके ताउन को फ़रोग दे। डॉक्टर जयशंकर ने मुल्क में मईशत, बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में भारत की तरक्की को उजागर किया। उन्होंने इस जरूरत को उजागर किया कि भारत और अफ्रीका के नौजवान हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बने। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाईयों और जम्मू कश्मीर के बारे में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के तबसरे को मुस्तरद कर दिया है। अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की 6वीं कमेटी में लोकसभा रुकन बिप्लब कुमार देव ने कहा कि OIC मजलूम और जालिम के दरमियान फर्क करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान से फैलने वाली सरहद पार दहशतगर्दी से अपने लोगों की हिफाजत करने का हक हासिल है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आलमी सतह पर गैर यकीनी के माहौल में बढ़ते हुए इफरात जर से मुताबिकत की खातिर रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। अपनी दोमाही पॉलिसी का ऐलान करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि माली पॉलिसी से मुतालिक कमेटी NMPC ने इत्तेफाकी राय से पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% के इजाफे का फैसला किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे से सपहर 3:30 बजे तक दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर पर होने वाले मुजाहरों के तनाजुर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कश्मीरी गेट और उसके अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासिर रह सकती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर कल एहतजाज के दौरान नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जबरदस्ती दाखिल होने पर दिल्ली पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की गई है। जराय के मुताबिक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज कर ली गई है और जांच का आगाज कर दिया गया है। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के कई अराकीन पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मकर द्वार से भारत के इंतखाबी कमीशन के सदर दफ्तर तक एहतजाजी जुलूस की अपील की थी। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने पंजाब के वजीर आला के OSG राजबब्बर घुमन और उनके साथियों के खिलाफ तबादलों के बदले नकद रकम लेने, IAS और IPS ओहदों के अफसरान की तकरीरियों में मुदाखलत करने और इल्जाम की जांच में बदउनवानी करने से वाबस्ता मामलों में FIR दर्ज की है। भारत ने फिजी में कोप 31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तरकदाम और पेरिस माहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बात की जरूरत है कि मुफाहमत में दूरी को खत्म किया जाए, आबोहवा से मुतालिक मौजूदा अजाइम को पूरा किया जाए और आलमी दर्ज हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने देने के मकसद की जानब पेशरफ्त में तेजी लाई जाए। भारतीय महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज दिन में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कराईकल उत्तर प्रदेश में भी आज दिन में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा

0: से खिताब किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस ज़रूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाएं। RBI ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिआं जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
6: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਲਤਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਮੋਹਿਤ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू अजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
1: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: फौजी वीरो, आओ हुण अज दे इस प्रोग्राम दे अखीर दे विच कभी खुशी कभी गम इस फिल्म दे विचों लिया लता मंगेशकर दे साथियां दा गाया आखरी गीत सुनदे हां।

0: फौजी वीरो कभी खुशी कभी गम फिल्म दे विचों लए इस गीते नाल ही अज दा प्रोग्राम हुण इत्थे ही खत्म हुंदा है। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां, आओ हुण दुपहर समाचार सुणदे हां।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
2: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया था, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
1: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
3: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं

0: वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
2: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: बल।
1: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
3: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
2: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
1: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
4: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
5: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
4: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
6: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
4: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
1: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर

0: केंद्रित उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: मीडियम वेव 373.6 MHz KHz, TRM 864 KHz, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा एह जलंधर केंद्र है। हुण पेश है प्रोग्राम रंगली धरती। रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसी सतनाम सिंह डुगरीवाला दे गाए लोक गीत सुनोगे। सब तो पहला सुनदे हां इन्हां दा गाया छल्ला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियां ते सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने दे अपने सुपने नू जरूर पूरा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रैपो दर नू 25 आधार अंक वधा के 5.5% कर दिता है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस आगुआ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा खिलाफ कल दे विरोध मार्च दौरान नवी दिल्ली दे आकाशवाणी भवन विच बिना इजाजत दे दाखिल होने दे दोष विच FIR दर्ज कीती है। भारत ते जम्मू कश्मीर ते पाकिस्तान विच दहशतगर्द ढांचे विरुद्ध भारत दी कारवाई ते इस्लामिक सहयोग संगठन OIC दीआं टिप्पणियां नूं रद्द कीता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत दी अफ्रीका नाल भाईवाली ना सिर्फ वर्तमान लई सगों आउण वालियां पीढ़ियां लई भी होवेगी। रूस दे दक्षिणी तट ते यूक्रेन वालों एक तेल टैंकर नूं निशाना बना के किए गए ड्रोन हमले च भारतीय चालक दल दे 23 मैंबरां नूं सुरक्षित बचा लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब दे मुख्यमंत्री दे OSD राजबीर घुम्मण अते उन्हां दे साथियों विरुद्ध FIR दर्ज कीती है। कपा दे विश्वव्यापी आर्थिक समाजिक अते चुगेड़दे संबंधी महत्व नूं उजागर करन लई अज विश्व कपा दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे मुख चोण दफ्तर वालों अज तों 11 अक्तूबर तक शहर भर दे पोलिंग स्टेशनां ते वोटर सूची तों बाहर रह गए योग नागरिकां दे नाम दर्ज कराउण लई विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप लाए जा रहे ने। मौसम विभाग ने 8 अक्तूबर तक चंडीगढ़ तों इलावा पंजाब दे कई ज़िलियां अते हरियाणा दे कुछ ज़िलियां विच गरज चमकण नाल हल्की तों दरमियाना मीह पैण दा येलो अलर्ट जारी कीता है। ते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्मृति संधाना नूं भारत दी महिला क्रिकेट टीम दा नवा कप्तान नियुक्त कीता है। ए सन हुण तक दीआं मुख चोणवीआं खबरां। DTS ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां डीटीएस दी पंजाबी प्रसारण सेवा ते चिट्ठियां पहुंच चुके ने लिख रहे ने कोटली कलां पंजाब तो यादविंदर सिंह सुखविंदर सिंह रविंदर मनजीत ते गुरजोत सिंह मुक्तसर तो लिख रहे ने बाबू सिंह दिमाण बलजिंदर कौर रवनीत निशु ते भुपिंदर मसीता डब वाली तो दर्शन लौट सरगुन इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लौट पिंड नथाणा तो लिख रहे ने हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता ते गीता कोई भी गीत सुनना चाहते ने मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत प्रणीता अर्जुन आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो वैशाली शैलेष सुमित ते ध्वनि टालीवाला जट्टा तो साहिब सिंह सुखजीत कौर बलविंदर

हरजिंदर ते सारा परिवार राजस्थान तो लिख रहे ने ब्रिजलाल चौहान ते नीरज कुमार ते इन्हां सारयां दे फरमाइश ते सुनदिया जी सुखशिंदर शिंदा की आवाज़ में यह गीत है। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

केहर, मामा मोहन, मामा मामी गुरमीन ते मासी जी सुदेश कुमारी। वाह जी वाह, मामा मामी सारे, मतलब मामा मामी कट्ठे होके आए ने। चकला बाजार समाणा तो लिख रहे ने संगीता जिंदल, पप्पू राजा खुशदिल ते हसमुख जिंदल। डब वाली हरियाणा तो जेके बुकालिया, सुनीता, संजय, अनिल ते मीना। ते इन्हां सारयां नूं सुना रहे हां लखविंदर बडाली दी आवाज़ विच गीत है। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब दे मुख मंत्री दे ओएसडी राजबीर कुमन अते उना दे साथियां विरुद्ध एफआईआर दर्ज कीती है। कपाह दे विश्वव्यापी आर्थिक समाजिक अते चौगिरदे संबंधी महत्व नूं उजागर करन लई अज विश्व कपाह दिवस मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने 8 अक्तूबर तक चंडीगढ़ तो इलावा पंजाब दे कई जिलों अते हरियाणा दे कुछ जिलों विच गरज चमक नाल हल्के तो दरमियाना मीह पैण दा येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्मृति मंदाना नूं भारत की महिला क्रिकेट टीम का नवा कप्तान नियुक्त किया है। एसी हुण तक दीआं मुख खबरां। मीडिया वेब 347.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, टीआरएम 854 किलो हर्ट्स, एफएम 100.8 मेगा हर्ट्स, एफएम 100.9 मेगा हर्ट्स और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेश है सदाबहार गीत। जी दोस्तों, शाम का जिक्र आंदा ही सब तो पहला साडे सारयां दे ज़हन दे विच इही गीत आंदा है, राजेश खन्ना दा अंदाज ते आरडी वर्मन दा संगीत। कटी पतंग दे फिल्म दे विचों लिया प्रोग्राम दा पहला गीत किशोर कुमार दी आवाज़ दे विच, इस दे बोलां नूं लिखिया आनंद बख्शी ने। आओ सुनिए।

0: कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभ निर्णय का चाओ। इस शब्द का गायन किया सी भाई सतविंदर सिंह अते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। प्रभु नाल प्रीत मिलाप दा सुभाग हर किसे नू प्राप्त नहीं हुंदा। विशेष गुणा वाली जीव रूप स्त्री जां गुरसिख ही ए लाहा लै सकदे हन। हुण प्रश्न है कि ओ किहड़े गुण धारण करिए कि प्रभु वस विच आ जावे। बाबा फरीद जी 126वें श्लोक विच प्रश्न करदे ने, कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हाउ करी, जित वस आवै कंत। ते आप जी खुद ही 127वें श्लोक विच उत्तर भी दिंदे ने, निवण सो अखर खवण गुण, जेहबा मणिया मंत, ए त्रै पैणे वेस कर ता वस आवी कंत। पर सवाल ए भी है कि किना गुणा करके प्राणा दे साई प्रभु नाल मिलया जा सकता है। ना मेरा रूप है, ना मेरे पास बुद्धि है, मैं तां दूर परदेस विच वसदी हाँ। ना मेरे पास तन है, ना जोबन है, मैं तां अनाथ हाँ। हे प्रभु जी मेरी सार लो। हे प्रभु मैं तां तैनू ढूंढ ढूंढ के वैरागण हो गई हाँ, दर्शना दी तिहाई हाँ। मैनू साध संगत बख्श के मेरी तृष्णा अग्नि शांत करो। राग गौड़ी पूर्बीज फरमान है, कवन गुण प्राण पात मिलाओ मेरी माई। ए वार्ता सुना रहे ने डॉक्टर निशा शर्मा।
1: ए इलाही फरमान श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी पूर्बी महला पंजमा सिरलेख अधीन उचारे शब्द दी पंक्ति है। इस पंक्ति अनुसार प्रभु प्राणा दा दाता है, सिरजन हार है। जपजी साहिब दे आरंभ विच मूल मंत्र विच असी उस परमात्मा दे गुण गांदे हुए गुरु नानक देव जी दे इना शब्दां नू रोज़ दोहरांदे हां। परमात्मा एक है, सारी सृष्टि विच सर्वव्यापक है, उसका नाम सच्चा है, ओह सिरजनहार है, उसने ही सारी कुदरत नू रचिया है, ओह भय तो रहत है, निर्वैर है, काल दे प्रभाव तो मुक्त है। गुरबाणी अनुसार सर्व गुणा वाला परमात्मा अकाल पुरख व्यंत है, ते असी जीव अब गुणा नाल भरे हुए हाँ। हे प्रभु फिर तेरा साढ़े नाल मिलाप किमें हो सकता है? प्रभु जिंद दा सहारा है, इसलिए गुरु अर्जन देव जी उस अकाल पुरख अगे नमस्कार करदे हुए फुरमांदे हन कि उठद्या बैठद्या सुत्या जागद्या मैं हर वेले तेनू याद करा। मेरा मन सुख दुख मेरी हर एक पीड़ा प्रभु जी आप दे अगे अरजोई बन के पेश हुंदी है। जो प्रभु करदा है उसे विच मेरी भलाई है। सवाल पैदा हुंदा है कि फिर कीर्ति क्यों करनी है, प्रभु दा जस क्यों गाउणा है? इसका उत्तर है कि इस गाउण दे नाल ही मनुख दे अवगुण दूर हुंदे जांदे हन ते गुणा विच वाधा हुंदा जांदा है। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, इस शब्द विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी उस प्रभु अगे उस प्राणा दी दात देन वाले उस सुख दाते अगे अरदास करदे हन कि हे मेरी माँ मैं केड़े गुण अपनावां जिस नाल मेरी उस परम पिता नाल प्रीत पै जावे, मेरा प्रभु मैनू मिल सके। सब अबगण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई, ना मैं रूप

ना बंके नैना ना को लटंग ना मीठे बैणा। इस करके प्रभु अग्गे बेनती ही करनी बनदी है कि हे समर्थ प्रभु आप जी दे अग्गे बार बार नतमस्तक हाँ, सानू किरपा करके डोलन तो बचाओ। खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन को हो फिरत तिसाई। जीव रूपी इस्त्री दे रूप विच पंजवे पातशाह गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि अपने प्राणपति परमात्मा दे दर्शन वास्ते प्यासी फिर रही हाँ, उस प्रीतम नू लभदी लभदी कमली होई पई हाँ। जदों जीव आत्मा अपने प्रीतम दे मिलाप दी तांग विच व्याकुल हो जांदी है तां हो अपने उस प्यारे नू लभण लई थां थां भटकदी है। जीव इस्त्री दा मन प्रभु दे दर्शन लई इन्ना प्यासा हुंदा है कि उस प्रीतम प्यारे दे मिलाप तो बिना कोई होर चीज़ उसनू तृप्त नहीं कर सकती। असल बैराग दुनिया दे त्याग तो नहीं बल्कि मन विच्चों झूठे मोह नू छड़ के प्रभु दे दर्शना दी सच्ची प्यास पैदा करन दे नाल है। गुण कीरत निद मोरी तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस ओट प्रभ तोरी। इन्हां पंक्तियां विच गुरु अर्जन देव जी ने फुरमाया है उस प्रभु दे गुणा दी सिफत सलाह ही मनुख लई सब तो वड्डा खजाना है। जीवन दी असल पूंजी उस दाते दी सिफत सलाह अते गुणा नू अपने जीवन विच धारण करना है। मनुख आम तौर ते सुख रस धन माण सन्मान रिश्तियां अते पदार्थां विचों लभदा है पर असली आनंद दा स्रोत ता हो सच्चा प्रभु ही है। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन बुझाई। वार्ता दे सिरलेख वाले शब्द विच गुरबाणी दा फरमान है कि प्रभु जो के गरीबां निमाणियां अते दुखियां उत्ते दया करन वाला है उसदी मेहर दे नाल साधु जना दी संगत मिलदी है। इस साध संगत दे विच आके जीव दे अंदरों जो उस दे प्रीतम दे विछोड़े दी अग मन दी बेचैनी अते तड़प हुंदी है वो शांत हो जांदी है। जदों जीव साधु जना दी संगत विच विचरदा है तां उसनू गुरु दे शब्द ते नाम दे राहीं जीवन दी सूझ मिलदी है। भगत जना दी संगत करन नाल मन हौली हौली टिक जांदा है ते अंदरली अशांति दूर हो जांदी है। सच्चे गुरु दी मेहर नाल उसनू नाम दा अमृत मिलदा है। गुरमुखां दी संगत विच आके उस दे अंदर सहज शांति ते आनंद पैदा हो जांदे हन। मनुखी जीवन नू गुरु दी रोशनी नाल सही दिशा मिल जांदी है। जिज्ञासु रूप दे विच बाबा फरीद जी प्रश्न करदे हन कवण सो अखर कवण गुण कवण सो मणिया मंत कवण सो वेसो हो करी जित बस आवे कंत। बाबा फरीद जी फरमांदे हन कि केड़ा ऐसा गुण अपनाया जावे कि प्रभु मेरे बस विच आ जावे। बाबा फरीद जी ही इस प्रश्न दा उत्तर दिंदे हुए आखदे हन कि निवण सो अखर खवण गुण जेवा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर ता वस आवी कंत। जदों मनुख विकारां तो उपर उठ जांदा है ता उसदे जीवन विच निमरता दया अते मिठास आ जांदी है जो के उसनू प्रभु दे मिलाप दे जोग बनांदी है। पिर रहया पर पूरे बेख हदूरे रंग माणे सहज सुभाए जिनी अपना कंत पछाणिया हो तिन पूछो संतां जाए। धन श्री गुरु अमरदास जी अपनी पावन बाणी विच जीव इस्त्री दे रूप विच फुरमांदे हन कि ओ सुहागण जीव इस्त्री है जिसने अपने प्रभु पति नू पछाण लिया होवे जिसने गुरु दे शब्द नाल जुड़ के अपनी आत्मक जिंदगी नू सफल कर लिया होवे ते अपने आप नू प्रभु भक्ति दे

मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सबते ऊंचा। इस शब्द गायन की तसी पाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
1: ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD

0: राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 6:05 हो रहे हैं। आओ हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

असम 6:30 ते पेश करांगे देहाती प्रोग्राम अज से कम दियां गल्लां अज दे मंडियां दे पा मेरी खेती बारे जानकारी लवांगे करनैल सिंह होना कोलों ते हांडी लई खादा बारे जानकारी लवांगे डॉक्टर राजीव सिक्का होना कोलों रात 7:10 ते जन सेवा से देश सेवा ते आधारित विशेष प्रोग्राम सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो शाम 7:45 ते पंजाबी वार्ता प्रोग्राम विच सुनोगे वार्ता जिसका विषय रहेगा स्वच्छ भारत अते प्लास्टिक मुक्त समाज जिसके वार्ताकार होंगे रिजवाना जालंधरी रात 8:00 सुनोगे भारतीय हवाई सेना की 94वीं वरेगंढ की पूर्वली शाम को भारत के हवाई सेना मुखी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह पीवीएसएम एवीएसएम वालों विशेष सुनेहा रात 8:10 ते जन सेवा तो देश सेवा तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बारे जानकारी लवांगे जिसे पेश कर होंगे मनदीप राजौरा 8:40 ते समा रहेगा पंजाबी गीतां दा तेरा 10:02 ते पेश करांगे प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश ਇਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਮੂਹ ਗਾਨ

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है, हुण तुसीं चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियां अते सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र ते अपने सुपने नूं जरूर पूरा करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज संगरूर जिले के पिंड बरडवाल विच 47 करोड़ रुपए तो वाधी लागत वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नींह पत्थर रख्या। कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने कहा, सूबे च बागबानी नूं प्रफुल्लित करन ते किसानां नूं बेहतर सहूलतां मुहैया करवाउण लई हाई चॉइस मंग दा हल कीता जाएगा। कपाह दे विश्वव्यापी आर्थिक समाजिक ते चुगिरदे संबंधी महत्व नूं उजागर करन लई अज विश्व कपाह दिवस मनाया जा रहा है ते अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 गैर कानूनी हथियार सप्लाई नैटवर्कां दा पर्दाफाश करदिआं इक नाबालिग समेत 8 मुलजमां नूं 15 पिस्तौलां समेत गिरफ्तार कीता। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियां ते सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनन दे अपने सुपने नूं जरूर पूरा करेगा। अज नवी दिल्ली च विकसित भारत संकल्प सभा नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि भारत जो कदे नीतिगत खड़ौत दी चर्चा नाल जुड़िया होया सी, हुण अपनी वधदी ताकत ते चुनौतियां दा सामना करन दी योग्यता लई जाणिआ जांदा है। उन्हां कहा कि पिछले 12 सालां विच स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
3: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 25 सालों दौरान उन्हां लोकां तों उन्हां नूं मिलिया विश्वास ते इस समय दौरान उन्हां नूं प्राप्त होया तजर्बा उन्हां दी सब तों वड्डी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इह भारत लई वड्डे टीचे निर्धारित करन दा समय है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नूं 25 साल दी जनतक सेवा पूरी करन ते वधाई दित्ती है। इधर पंजाब भर में भी कई थावां ते इस मौके प्रोग्राम उलीके गए। मोहाली विखे जिला BJP के मुख दफ्तर विखे सेवा संकल्प यात्रा प्रोग्राम करवाया गया ते प्रधानमंत्री दे संबोधन नूं सुनिया गया। इस मौके पंजाब BJP प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री के 25 साल के कार्यकाल दौरान गुजरात अते हुण भारत नूं विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाउण की गल करदिआं कहा कि देश हुण विकसित भारत के टीचे वाल अगे वध रहा है। उधर BJP जिला पठानकोट वालों शैली रोड स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम विखे विकसित भारत सभा का विशेष प्रोग्राम करवाया गया। इस मौके सबका केंद्रीय मंत्री ते कौमी अनुसूचित जाति कमिशन के सबका चेयर

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल और जानकारी लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पर विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। लो हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: हाँ जी संधु साहब जी, लंघ आइए।
1: आजो आजो शिंगारा सिंह जी, आजो लंघ आओ।
0: आगे जी आगे जी। संधु साहब जी, जय हिंद।
1: जय हिंद जी, जय हिंद। शिंगारा सिंह जी, सुनाओ की हाल चाल
0: हाल
1: आ?
0: चाल तगड़े ने जी, तुहां सुनाओ ठीक ठाक हो?
1: बहुत बढ़िया।
0: वधिया होना चाहिदा
1: देखो, आपां गल करदे हुणे आ शिंगारा सिंह जी,
0: जी।
1: कि कहिंदे बई खाइए मन भाउंदा,
0: हाँ
1: पर जिहड़ा पहने है वो दुनिया नूं अच्छा लगे।
0: हाँ सही
1: ते
0: गल
1: पहनने नूं देखदा, आपां कहिंदे कि कपाह दे बणे हुए जिहड़े कपड़े,
0: है।
1: उहनां दी आपणी महत्ता हुंदी है
0: देखो
1: जी।
0: जी, उहदे वर्गी रीस कोई नहीं है।
1: हाँ
0: साडे तन नूं सजाउंदे आ,
1: हाँ
0: ठीक है जी, सानूं गर्मी सर्दी तों वी बचाउंदे आ।
1: हाँ सोते जिहड़ा चीज़ बणी हुई सी ना,
0: हाँ
1: एक तां देखो खूबसूरती इह हुंदी सी आपणा शिंगारा सिंह जी के हाथ नाल बणे हुंदे सी,
0: जी
1: ते मौसम दा तुसीं क्या कि खास तरीके नाल अपने आप कुदरती तौर पर सी
0: जी
1: भी हर मौसम का ये टाकरा कर लेंगे।
0: हाँ सही गल है
1: हाँ जी,
0: जी।
1: एक तरीके नाल देखियो कि साढ़े समाजिक पक्षों देखो, रुजगार के दे पक्षों देखिए,
0: हाँ
1: तो यदि खेती की बड़ी महत्ता हैगी है साढ़े किसान वीर वास्ते
0: बिल्कुल।
1: जी।
0: देखो किसानों की मेहनत सदका ये साढ़े तक जड़े पदार्थ बन के आए आ, कॉटन
1: हाँ
0: दे
1: हाँ
0: जड़ियां वस्तां आईयां आ, उन्हां दी मेहनत सदका आ।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कहिंदे आ जी भी मेहनत पल्ले सफलता,
1: हाँ
0: आलस पल्ले हार, आकड़ पल्ले औकड़ा,

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: थैंक यू।
1: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू हैं?
2: तो देखिये, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जिस सुधार की आप बात कर रही हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स $1.5 trillion, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। टुडे देयर 3 मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जो बंद हैं, बाबल मंडप, हॉर्मुज, ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से, लगभग उस समय से, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं, अभी भी PMO की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है। इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द CDS DMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी, और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है, उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
1: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल शब्दों में,
2: मतलब ये है

0: army, navy, air force. Mm. So there are army commanders for each area. There are naval commanders for each area. There are air force commanders for each area. Theatrization ka matlab hai ki aap do ya teen theaters banaye. Ek theater which looks at the western horizons, so pashchimi tat ki or. Ek at the eastern horizons, ya China, western horizons, Pakistan and beyond. Aur ek maritime theater. Aur do teen, jaise space is a theater, cyber is a theater. But once you say Western Horizons, ab usme army, navy or air force, they will be integrated into this one theater commander. Ab dekhiye, CDS is the single point advisor to the prime minister, to the government, to the National Security Council. So it's not army taking its plan, navy taking its plan. It is integrated plan which the CDS takes. Sindoor mein dekhiye kya hua. So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the integrated plan to the prime minister. Aur iske piche bhi ek lamba itihas hai, prashthbhumi hai. So that is optimizing all available resources for best combat outcomes.
1: Aapko lagta hai ki jo vartaman sarkar hai, unhe milke chalna chahiye. To usi ka ek ye ek prarup hai jo hum defense forces mein dekh rahe hain.
0: आपने बहुत सही सवाल पूछा. देखिए क्यों इवन आप इसकी तुलना करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अ परमानेंट चेयरमैन इन 1949. उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स. तो आपने गल्फ वॉर सुना होगा, टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16. आप देखें उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन. और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन. द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब. So those are the steps. Today we are in what we call coordinated jointness. Yes. Then you have to go to integration, then cross-pollination, then civil-military fusion, which is whole of government. मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ. एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, it has picked up an American called Omar Yagi, Nobel laureate in chemistry. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI डिपार्टमेंट है फॉर एडवांस्ड मटीरियल्स, जिसमें PLA का 30% representation. तो academia, PLA and Nobel laureate kind of talent. That is civil military fusion. तो ये अभी एक लंबा सफर है. CDS पहला पड़ाव था, integration, theatrization दूसरा पड़ाव होगा. And that is the way we will grow if we have to become a power of consequence. But जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, this is the beginning of that journey. और देखिए इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है. जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ढांचा था
1: जी,
0: उसमें एक ये महत्वपूर्ण फेरबदल है. देखिए पहले क्या होता था कि अ सर्विस चीफ वुड गो टू द रक्षा मंत्री थ्रू द डिफेंस सेक्रेटरी. सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट द सर्व सोल्जर कुड गेट टू हिम ओनली थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक एयर. नाउ इट इज इक्वल्स, डिफेंस सेक्रेटरी, CDS, बोथ, सो दैट द रक्षा मंत्री गेट्स द बेस्ट एडवाइस. इसका दैट इज द लॉजिक. और जैसे मैंने कहा, इसके जो अब हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन की ओर अग्रसर है
1: जी,
0: और इसके मील पत्थर क्या होंगे, प्रतिभा, टैलेंट, मैंने उसका एक उदाहरण दिया आपका, इनोवेशन, नवाचार. टुडे यू कांट हैव आउटडेटेड प्रोसेसेस. देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, ड्रोन्स, AI, ये सब हकीकतें हैं. एंड अलॉन्ग विद इनोवेशन, डीरेगुलेशन. जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, ही सेड private sector or startups ke silsile mein he was telling us that release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure, niyamon ka jaal. So CDS DMA is a symbol, but iske piche gehra soch hai.
1: Sorry to interrupt, but aapko lagta hai ki shayad unki doordarshi soch thi. Aap keh rahe hain ki 2014 mein hi is tarah ka jo soch hai wo samne aa gayi thi. To in time it was taken jo decision.
0: It is a revolutionary step in the civil military relationship. Mm. It is building of trust between the civilian political leadership and the military. So there are complex factors here. Dusra jo kendra bindu hai bahut mahatvapurna, Atmanirbharta and defense. देखिए हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था, इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs. अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, द कैरेक्टर ऑफ वॉर, उसमें आमूल परिवर्तन.

0: सो टुडे इफ यू सी यूक्रेन वगैरह में पॉलीमैथ्स जो है उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं. आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ. इट इज सच अ पावरफुल मिलिट्री, देयर इज नो मिलिट्री विच कैन प्रोजेक्ट पार टू ओशंस अवे. बट अभी एक रिपोर्ट निकली है वॉशिंगटन से कि वाई द US हैज नॉट डिलीवर्ड इन एपिक फ्यूरी. एपिक फ्यूरी में उसका काम इतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज इट वॉज स्लो टू लर्न द लेसन्स ऑफ यूक्रेन. यूक्रेन से जो सीख थी ड्रोन्स AI वो नहीं कर पाए. तो देयर US नेवी, उसने ईरानियन नेवी के 160 शिप्स को ध्वस्त कर दिया. बट इट वॉज नॉट स्मॉल इनफ, एजाइल इनफ, ऑटोनमस इनफ टू ऑपरेट इन द स्ट्रेट.
1: तो आप जो चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
0: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है. यू नीड द इनोवेशन एजिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स. अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन प्रोसेस प्रोसीजर HAL इज प्रॉमिसिंग यू AMCA ओनली बाय 2030. अंग्रेजी में एक कहावत है दैट टुडे क्या हो रहा है दैट multi-billion-dollar capacities विच आर डिलीवर्ड इन 10 years they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks. Ukraine mein ye ho raha. So this is the reason why we have to move towards private sector and startups. Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke saath, to meri wo jo kya kehte hain professional career, vyavsayik jo zindagi hai, uska ant ho jata. You are not supposed to interact. Aaj aap dekhiye, jo hamare nausena adhyaksh hain, Admiral Swaminathan, वो सार्वजनिक मंच से ही वॉज टेलिंग द CEO स्टार्टअप्स यंगस्टर कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम प्रोग्रेस. इतने मैं आपको गिना दूं, देखिए सर्वम AI गैलेक्साई मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी पनियन टर्बोफैन इंजन थर्ड आई टेक न्यू स्पेस दीज आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स.
1: रिलायंस को जो बढ़ावा मिला है,
0: बढ़ावा मिला है
1: जी
0: स्टार्टअप से, ये जी बहुत ही जिसे कहते हैं इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेप. रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द 5th generation फाइटर बट द 6th generation फाइटर. तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है.
1: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते
0: आज
1: हैं.
0: जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड्स, उसमें 42 शिप्स का निर्माण हो रहा है वॉरशिप्स. बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज चाइना हैज गॉट 500 शिप्स. बट ये दो तीन चीजें जो हैं आत्मनिर्भरता इन डिफेंस जिसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है, स्टार्टअप्स का प्रवेश हुआ. और एक आखिरी चीज मैं बोल दूं
1: जी बिल्कुल,
0: हमारी जो सामरिक सोच है जो नीति है उसमें भी देखिए नए स्तंभ. आप देखें ये जो आतंक पर प्रहार हुआ है और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं. एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है कि देखिए आपकी जो सामरिक नीति है अगर उसमें आप आतंक उसका केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे. एंड इट इज जस्ट नॉट अ फ्रेज, वी हैव डन इट. हमने कैसे किया, चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा. आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की, देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया. जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी कि साहब मत करिए. फिर आपने किया पुलवामा, इस बार हमने कहा POK नहीं, POK बाहर बालाकोट में आपको जाके मारा. और फिर भी जब आप नहीं माने और आपने पहलगाम किया तो हमने सिंदूर किया. आप 10 मई 2025 का स्मरण करें, पाकिस्तान डिफेंसेस ले बैटर्ड, इट्स सॉवरेनिटी ले शैटर्ड. हमने तो ये जो टारगेट्स है ना 40-50 टारगेट, हमने तो सिर्फ मैप्स पे मारे थे. पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी, रायविंड, नूर खान 1.5 किलोमीटर था GHQ से. पाकिस्तान नोज इट दैट दे वर बैटर्ड एंड शैटर्ड. Now look at the message that we have given.
1: So Mr. Nathaniel, coming to you, आप क्या कहेंगे, ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धियां रही हैं, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी बताया डिफेंस सेक्टर में, अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इसी वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया?
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद CRPF ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ काम किया बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह के आसपास था ज़्यादातर. वहाँ पे जब तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ, दूसरे इलाकों में. तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया वहाँ पे, खासकर अबुजमांड एरिया में. वहाँ पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था, और वापसी में जब आते थे तो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके.

0: और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते हैं बड़े तादाद में, 200-300 के तादाद में 70-80 आदमी पे अटैक करें। उससे क्या था कि काफी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह खत्म करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें ये खत्म करना ही है। और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और सीएपीएफ के, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएएसएफ, आईटीबीपी, ये सब उसमें आते हैं, एसएसबी भी है, तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने खत्म करना। उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं, जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे, और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि इट इज मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया, तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रेच बना दिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स आने शुरू हो गए और उनको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड बिछाने लग गए। इन रोड्स के बिछाने की वजह से ट्रूप्स भी अंदर जाने लगे, सीआरपीएफ के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाने शुरू हुए, जिसको हम एफओबी बोलते। उन एफओबी में जब कंपनियां आके बैठ गई, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं, और उनके पास कोई 15-20 गांव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहां जम गए सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस भी, तो इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं थी, हम ज्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है नक्सलाइट्स को ही पता है।
1: जब सड़कें बनी तो आपका वहां पर पहुंच बनी
0: बिल्कुल जी, जी। तो फोर्सेस जब वहां जम गए, तो लोगों के अंदर जो पहले भय था नक्सलाइट से, तो उस भय को दूर कर दिया गया, और वो खुद आके बताने लग गए कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है। और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लग गए, ऑपरेशन काफी जोरों से किया गया, और उस वजह से उन लोगों के काफी कैजुअल्टीज होने लग गए। और इससे ये भी हुआ कि कैजुअल्टीज जो फोर्सेस के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारेगुटा हिल्स, जो कि काफी 15-20 किलोमीटर तक चल रहा था, और उसमें सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय खुद भी थे, और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए जंगलों के अंदर, काफी कठिन इलाका था, और कोबरा बटालियंस भी वहां पे पहुंचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार रखे गए, ताकि अगर कुछ कैजुअल्टी होता तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह ही पहुंचाया जा रहा था। उस कारेगुटा ऑपरेशंस ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारेगुटा हिल्स को खाली कर दिया, और कई तो आंध्रा की तरफ भाग गए। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है, तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहां पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन जोरों से शुरू किया, और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है
1: जी,
0: उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ, और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसवराजू के साथ, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया, तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया था। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें, सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा,
1: सो रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
0: तो उसके वजह से कईयों ने सोचा क्यों ना हम निकल जाएं यहाँ से, और उसमें ये भी था कि जब इनके आपस में शादियां भी होती हैं नक्सलाइट्स जंगलों में रहते हैं, लेकिन दे के नॉट प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता था, लेकिन हर आदमी चाहता है भाई मेरे बच्चे भी हों और आगे मेरा

0: दान बढ़े, तो उसके वजह से कईयों ने सरेंडर किया, तो उनका रिवर्स किया गया स्टेरिलाइजेशन और मकान दिए गए, फैमिली ढंग से रहने लग गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया, स्किल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उनको काम भी दिया गया। और कई जो उनमें बड़े अच्छे थे उनको, जो कि ट्रेंड आदमी थे, उनको स्टेट पुलिस में भी लिया गया। वहां पर बस्तर बटालियन है और छत्तीसगढ़ का अपना CAF है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, उसके अलावा जैसे बताया DRG भी है, जो अच्छे ट्रेंड थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी, उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थ और आत्मनिर्भर सुरक्षा, और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG है। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे?
0: बसेस भी जाने लगे, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और CRPF एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, इधर कोई तकलीफ है CRPF में पहुंच जाएंगे, वहां से खबर पहुंच जाएगी DM तक, कहीं पे भी पहुंचाना खबर। तो अब वो इंटरेक्शन, क्योंकि CRPF पहुंच गए हैं, पब्लिक का इंटरेक्शन CRPF से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है।
1: जी,
0: पहले जब किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं IG झारखंड था तो मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली, और कई ऑपरेशन, एक सरेंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहां पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुंचा रहे थे, ताकि, और उस सरेंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया, नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहां जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती। लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, 1-2 कैजुअल्टीज हुए, लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड इवन नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए, ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं, अगर कोई आता है तो मालूम पड़ जाता है नाइट विजन डिवाइसेस। तो इन चीजों से हम काफी फायदा, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन ये काफी तादाद में जब वहां यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: सो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस, जो आप लोग वहां तैनात होते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या MSMEs या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए, जैसे मैंने आपको बताया HAL की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट HAL स्मार्टन्स अप, सो दैट RPSUs आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, he does not bother about the American competitor, he is more bothered about the Chinese competitor. प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कम्पीट करने की काबिलियत रखती हैं। सो वी नीड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देख लें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात, रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज AI इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वार्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन, ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वार्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे cannot बी driven by a प्रोसीजर which यू परफेक्ट इन years। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करते थे,

0: Ford used to lay out a GSQR, General Staff Qualitative Requirement. कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं. आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं, पामर लकी कहते हैं, You are nobody to tell me the product you want. I will give you a product that you can't refuse. ये हकीकत हो रही है. अब GSQR, बाहर लोग बोलते हैं GSQR is dead. तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग वॉट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर, वी नीड मोर रिफॉर्म. देखिए, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, विच इज लिंक्ड टू प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एंड ऑल. मैं आपको बताऊं कैसे. हम जब बाहर जाते थे 2005-6 में, तो लोग कहते थर्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं. हम कहते थे साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट. टुडे If the last figures were are right, in fact, I was hearing the Honorable Raksha Mantri, 38,000 crores.
1: Yes.
0: अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, this is a 5,500% की उछाल है.
1: और 80 देशों में जा रहा है.
0: 80 देशों में, जैसे आपने कहा, आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं. 145 फर्म्स हैं, एमएसएमईज वगैरह सब मिला के, विच आर डीलिंग विद दिस. आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग. और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो अ जियो पोलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है. इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज.
1: Yes.
0: It is for strategic encirclement. हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस देके चीन को घेरा है. So exports are a geopolitical lever. They are a source of revenue. They make so much sense. And I think this is one area where we have, in fact, we are moving from being importers from the world to exporters to the world.
1: In fact, जो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक आइटम्स हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक ईयर मार्क करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो आप दिखाई भी दे रहे हैं एक्सपोर्ट.
0: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था. देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊं हकीकतन हो क्या रहा था. मान लीजिए टैंक है, भाई हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे. हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग. बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे. एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था. तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे. और एमएसएमईज बना सकते हैं. आजकल तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं. तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे. पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा. बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे, उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं. जब नहीं आए तो हमने बना लिए. सी, इंडियंस आर वेरी गुड. हमने डीपीआई नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी. तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट. तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है. जो हमारी इम्पोर्ट पे खर्च था वो कम हुआ है. नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर, वी विल परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट.
2: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़े.
0: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखिए बुनियादी सवाल क्या था, आई जी साहब ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेज डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेज डेवलपमेंट. रॉन्ग. It is security and development.
1: Yes.
0: Defense and development. Civil military fusion. साथ चलना है. So deep, जो मूलभूत जो चर्चा थी वही गलत थी. We have turned it around. We grew up in silos. Government, private sector, PSUs, private sector, academia अपनी दुनिया में. अरे भाई academia में आप invest नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, pure sciences नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती. Everybody has to integrate. So there is a larger conceptual change also which is driving all these, I would say, mega reforms.
1: So ये जो conceptual change की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और reflection FTI, जो defence में FTI को liberalize किया गया है 74% तक via automatic route and 100% via government. तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में कि इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक important reform है.
0: बिल्कुल. तो आप एक छोटी सी कहानी सुने. I was growing up 1980s, आपको भी याद होगा. We said space is an exclusive thing, few countries do it. countries. I'm emphasizing. So

0: USSR, USA, India was also. But हम whispers में बात करें, हमारे सिलसिले में क्या होता है? That national security, only government can do it, only DRDO because it is exalted, lofty. और उस दायरे के अंदर क्या हुआ कि in this PSU complex, a lot of, shall I say, slots slipped in, inefficiencies. और उसको protect करने के लिए हमने कहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पे प्राइवेट सेक्टर प्रूव दैट इट हैड एफिशिएंसीज ऑफ इट्स ओन। तो एफडीआई में भी यही था पहले, और इसको हमने पहले कैसे कहा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, द प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए। सो उस तरह से ये जो एफडीआई धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, पीएसयू स्ट्रक्चर्स में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए हमको पीएसयूज या से कोई गिला नहीं है, ऑल दैट वी आर सेइंग, आप पीएसयू हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप्स हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। एंड इफ यू लुक एट द फ्यूचर, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी, यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन। सो आई एम सेइंग कि इंडिया में भी HAL, BEL, दे आर वेरी गुड कंपनीज, बट इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा, दे हैव टू बिकम AI कंपनीज
1: बिकॉज़ द डिलीवरी इज डिजिटल। स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो आया है भारत में, और वी आर द थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए उस दिशा में।
0: बिल्कुल, मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स बिकॉज दे आर एजाइल, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक। यू नो ये जो चीजें आजकल, जैसे मैंने बताया, मेरे को तो ये लगता है, ये सब पता नहीं क्या कहें, कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज लाइ द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है, सिविल स्पेस में भी है। आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया, मैंने आपको इनाम गिनाए थे, दीज आर जस्ट IT इंजीनियर्स, किसी ने गराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, बट दे हैव डिलीवर्ड, एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द डिफेंस स्पेस, इन द सिविल स्पेस तो और भी हुआ है। सो I'll go back toward the Prime Minister. I think it was very important. Release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शियम बना के रखे थे, that was throttling national security. उसको आजादी मिली है अभी।
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में अगर हम देखें पिछले 12 सालों में। मिस्टर थेतेल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए।
2: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री, राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट, और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है, सिवाय मणिपुर के, जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहां पहुंच गए हैं, उसी तरह कोबरा बटालियन अब J&K में ही पहुंच गए हैं, सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी एंड कोबरा बटालियन अलॉन्ग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दो एरिया। अब वहां पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया है, हालांकि कुछ हैं, एक तो उल्फा है आसाम में जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है, लेकिन हमारे काबू में है, वो ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता। लेकिन J&K में जो है वहां पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी, और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहां पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था, और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे।
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। से आप AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com।

0: एफ 343 आरएच मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 854 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की घड़ी ते 7:45 हो रहे हैं। लो हुण पेश है पंजाबी वार्ता का प्रोग्राम। अज दी वार्ता का विषय है स्वच्छ भारत अते प्लास्टिक मुक्त समाज। वार्ताकार ने रिजवाना जलंधरी।
1: साफ सुथरा वातावरण किसी भी सभ्यक समाज की पहचान हुंदा है। जिस धरती ते असी जन्म लैंदे हाँ, जिस हवा विच सांह लैंदे हाँ, जिस पानी नाल अपनी प्यास बुझाउंदे हाँ अते जिस मिट्टी विचों साडा अन्न पैदा हुंदा है, उस धरती की संभाल करना केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं सगो हर नागरिक का नैतिक फर्ज है। भारत की संस्कृति विच सफाई का संकल्प कोई नवा विचार नहीं। साडे पुरातन जीवन मुल्लां विच शरीरिक सफाई दे नाल नाल घर पिंड पानी दे स्रोतां अते आले दुआले दे वातावरण नूं साफ रखण ते भी जोर दिता गया है। साडे गुरुआं संतां अते विद्वानां ने मनुख नूं कुदरत नाल सांझ पा के जीवन का संदेश दिता। इसे परंपरा नूं आधुनिक समय विच एक वड्डे समाजिक अंदोलन दा रूप देण दी लोड़ महसूस हुई, जिस दा मकसद है स्वच्छ भारत, सेहतमंद भारत अते जिम्मेवार भारत। सफाई दा अर्थ केवल झाड़ू लाउणा जां कूड़ा चुकना नहीं। सच्ची सफाई तां उस वेले शुरू हुंदी है जदों असी कूड़ा पैदा करन दी अपनी आदत बारे सोचदे हां। असी की खरीददे हां, किन्नी पैकिंग वालियां वस्तुआं खरीदते हाँ, वरतों तो बाद वो चीज़ कित्थे जांदी है, इह सवाल अज हर जागरूक नागरिक नूं अपने आप तो पुछना चाहिदा है। इस संदर्भ विच प्लास्टिक दी समस्या साडे सामने एक वड्डी चुनौती बन के खड़ी है। प्लास्टिक ने निश्चित तौर ते साडे जीवन नूं कई तरीक्यां नाल आसान बनाया है। यह हल्का है, सस्ता है, मजबूत है अते कई कम्मां लई सुविधाजनक है। पर सुविधा दे इस सिक्के दा दूजा पासा भी है। एक वार वर्त के सुट दित्ती जाण वाली प्लास्टिक दियां वस्तुआं जिवें प्लास्टिक दियां थैलियां, कप, प्लेटां, चमचे, स्ट्रॉ अते होर एक वारगी समान वातावरण लई लंबे समय दी समस्या पैदा करदे हन। असी अक्सर एक छोटी जिही प्लास्टिक दी थैली नूं बेमतलब चीज़ समझ के सुट दिंदे हाँ, पर वह थैली साढ़े सुट्टन नाल खत्म नहीं हुंदी। वह नाली विच जा सकती है, पानी दे स्रोत विच पहुँच सकती है, मिट्टी विच पई रह सकती है, जा किसी पशु दे पेट विच जा सकती है। इस तरह साढ़े कुछ मिनटा दी सुविधा कुदरत लई लंबे समय दी मुश्किल बन सकती है। शहरां विच प्लास्टिक दा कूड़ा नालियां अते सीवरेज प्रणालियां नूं जाम करन दा एक कारण बनता है। जदों वर्खा दा पानी सही तरीके नाल निकल नहीं सकता तां पानी खड़ा होण अते शहरी जल भरा दी समस्या वध सकती है। पिंडां विच वी प्लास्टिक दा कूड़ा खेतां छप्पड़ां अते सड़कां दे किनारियां तक पहुँच रहा है। इस नाल सिर्फ दृश प्रदूषित नहीं हुंदा सगो साडे कुदरती स्रोतां ते वी बोझ पैंदा है। समुंदरां अते दरियावां विच पहुँचण वाला प्लास्टिक जल जीवन लई वी चिंता दा विशा है। कई जल जीव प्लास्टिक दे टुकड़ियां नूं भोजन समझ के निगल लैंदे हन। इस तरह मनुख वल्लों पैदा कीता कूड़ा कुदरत दी खुराक लड़ी तक पहुँच जांदा है। इत्थे सानूं एक महत्वपूर्ण गल समझण दी लोड़ है। प्लास्टिक दी समस्या दा हल सिर्फ प्लास्टिक चुक के कूड़ेदान विच पा देण नाल नहीं होएगा। इस लई सानूं अपनी जीवन शैली विच तब्दीली लियाउणी पवेगी। सब तो पहला कदम

ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप सभी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में हम समस्त वायु योद्धा, भारतीय वायु सेना, अचूक, अभेद एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे। जय हिंद।
1: हुण तुसीं भारती हवाई सेना की 94वीं वरेगंढ की पूर्वली शाम नूं भारत दे हवाई सेना मुखी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह PVSM AVSM वल्लों विशेष सुनेहा सुन रहे सी।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 854 किलो हर्ट्स, DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी ते 8:10 हो रहे हैं। लाहौन पेश है जन सेवा तो देश सेवा ते आधारित जानकारी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

0: na ty.
1: मैं हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।
2: जी श्रोतियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे विकसित भारत दे सुपने नू पूरा करन लई अते देश दे नागरिकां नू उद्यमिता यानी के एंटरप्रेन्योरशिप वल अगे वधाउण लई मील दा पत्थर साबित हो रही है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना।
3: आज इस विशेष प्रोग्राम दे विच गल करांगे मुद्रा योजना दी, कौन इस दा फायदा ले सकदा है, की फायदे ने इस योजना दे, एह सारियां गल्लां करांगे आज तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच। मुद्रा योजना दा पूरा नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। 2015 च इस योजना की शुरुआत की गई, जिस दे तहत छोटे अते मध्यम वर्ग दे दुकानदार, रेड़ी फड़ी स्टॉल या खोखा विक्रेता, चाह, सब्जी, जूस आदि रेड़ी लाने वाले साथी, खेती मजदूर सस्ती व्याज दरां ते इस योजना दे तहत कर्जा ले सकते ने। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो इस योजना दे तहत कर्जे अते होर फायदियां नूं लैणा, ता तुहाडी उम्र 18 तों 65 साल तक दी होनी चाहीदी है। इस कर्जा योजना दे तहत पैंदी वख-वख कैटेगरियां दे विच कुछ जमीन वाले साथी भी अते कुछ बेजमीने साथी भी इस योजना दा फायदा चुक सकते ने। पर जेकर तुहाडा पहला कोई होर लोन चल रहा है तां तुसी इस दा फायदा नहीं ले सकते, अते जेकर तुसी सरकारी नौकरी ते हो ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 35% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,75,000 रुपए भरने नहीं पैणगे, उस रकम की तुहानू छोट मिलेगी अते तुहानू सिर्फ 3,25,000 रुपए ही देने होंगे, वह भी सस्ती व्याज दर दे उत्ते। तुसी जेकर अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहुंदे हो जिवें कि सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, छोटी दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मशीनरी का कम, खाण पीण नाल संबंधित कोई छोटा कारोबार जां किसी होर तरह का कोई छोटा उद्यम, तां इस प्रोग्राम दे विच दित्ती जाण वाली अज दी इह जानकारी तुहाडे लई लाहेवंद साबित होवेगी। आओ वेखदे हां कि मुद्रा योजना है की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 नूं शुरू कीती गई। इस दा मुख उद्देश छोटे अते सूखम उद्यमां नूं संस्थागत कर्जे दी सहूलत देना अते लोकां नूं स्वै रोजगार यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता वल उत्साहित करना है। इस तहत योग छोटे कारोबारियां नूं बैंकां, खेतरी ग्रामीण बैंकां, छोटे वित्तीय बैंकां, सहकारी बैंकां जां NBFCs अते MFI वर्गे योग वित्तीय संस्थानां राहीं कर्जा मुहैया कराउणा है। इस दा मतलब है कि जेकर तुहाडे कोल कारोबार दा विचार है अते तुसी उस नूं अगे वधाउणा चाहुंदे हो तां हुण वित्तीय समस्या तुहाडे सामने नहीं आवेगी। इस योजना दे तहत असी मोटे तौर ते वेखीए तां इस कर्जा योजना नूं 3 श्रेणियां च वंडिया गया। पहली है शिशु योजना। इस तहत आम तौर ते 50,000 रुपए तक दा कर्जा दित्ता जांदा है। इह उहनां लोकां लई है जो अपना छोटा कारोबार शुरू कर रहे ने जां अपने कारोबार दे शुरुआती पड़ाव ते ने। दूजी योजना है किशोर योजना। इस तहत 50,000 तों वध अते 5 लाख तक दे कर्जे दित्ते जांदे ने। तीजी श्रेणी यानी कि तरुण श्रेणी है, इस तहत 5 लाख तों वध 10 लाख रुपए तक दा भी कर्जा दित्ता जांदा है। हुण एक होर श्रेणी तरुण प्लस श्रेणी इस विच जोड़ दित्ती गई है, जिस तहत 10 लाख तों 20 लाख तक दा कर्जा तुहानू दित्ता जाएगा साथियों। पर यह कैटेगरी उन्हां साथियों लई है जिन्हां ने पहला तरुण श्रेणी दे विच अपना कारोबार शुरू करन लई इस योजना दे तहत लोन लिया होया। असी एक बार फिर देखदे हां कि किस किस तरह दे कम्मां दे लई जां कारोबारां दे लई इह कर्जा तुहानू

मीडियम वेव 343 यारा 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स यारा 864 किलोहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 8:30 हो रहे ने। हुण तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां।

डी शहर छः मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डी आर एम 804 किलोहर्ट्ज़, एफ एम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफ एम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते डी टी एस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियो दे कड़े ते 8:40 हो रहे ने। आओ हुण सुणदे आं पंजाबी गीत।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।

0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange.

0: best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
1: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
2: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
3: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम वीबीजी राम जी भी कहते हैं, वो ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के

0: उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा होने पर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है और ये व्यवस्था पहले की मनरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए, इस योजना के बारे में समझने के लिए, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ में है आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद निखिल जी।
0: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VVGRAMJI भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
1: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत GRAMJI, यह एक ऐतिहासिक एक्ट जो बना हुआ है, वह पूरे देश में लागू हो चुका है। एक ही दिन में भारत देश के सारे ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत GRAMJI के सारे प्रावधान जो है वो लागू हो चुके हैं। उसके तहत अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 36 करोड़ से भी ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसे कि हम परसेंटेज कहते हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा वर्कसाइट्स पर जो है विकसित भारत GRAMJI के काम चल रहे हैं और 2,34,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये जो काम है वो किए जा रहे हैं। 2.99 ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रोजगार मांगा, उनको 15 दिन के अंदर अंदर यह रोजगार उपलब्ध किया गया है और लोगों की रोजगार की और आजीविका की कई सारी ये जो डिमांड्स हैं उनको तभी के तभी फुलफिल किया गया है। तो एक तरीके से 1 जुलाई से विकसित भारत GRAMJI का राष्ट्रव्यापी जो शुभारंभ हुआ है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई और बहुत ही स्मूथली विकसित भारत GRAMJI लागू हो चुका है और सारे ग्रामीण उसका बहुत सही तरीके से 125 दिन की जो बढ़ी हुई रोजगार की गारंटी है उसका यूज कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा, अब उसमें आगे जाते जाते कई सारे पहलू जो है हम लगा रहे हैं, जैसे कि नए कामों की जो सूची अभी अभी भारत सरकार ने नोटिफाई की।
0: रोहिणी जी, इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि केवल रोजगार ही उपलब्ध न कराया जाए बल्कि कई अन्य काम भी हो, जैसे कि गांवों में जल संरक्षण हो, जल सुरक्षा हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, आजीविका से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जलवायु या फिर अत्यधिक मौसम से बचाव जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाए। इस दिशा में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक जो सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में बताएं।
1: विकसित भारत GRAMJI का अगर आप नाम ही देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मतलब यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम जो है वो केवल रोजगार की बात नहीं करता है, वो रोजगार के ऊपर जाकर आजीविका की बात करता है, जिससे कि लोगों को केवल मजदूरी, केवल रोजगार ना मिले परंतु स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध हो। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो अनुमेय कामों की सूची है। अनुमेय कामों की सूची में जैसे आपने कहा, टोटल 375 काम जो है वो अनुमेय माने गए हैं विकसित भारत GRAMJI में, जिसकी सूची जारी हुई। इन 375 कामों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी गई है तो वह है जल संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल है तो कल है, कैच द रेन, ऐसे कई सारे कैंपेन्स जो है भारत सरकार चलाता है जिससे कि हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए, हमारे शहरी विभागों के लिए पानी की कमी ना रहे, वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। इंडियाज वाटर विजन 2047 भी यही कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले वाटर सिक्योर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जल संधारण के जो कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आप देख सकते हैं कि 128 ऐसे काम है 375 में जो कि जल संधारण के कार्य है, वाटर सिक्योरिटी के कार्य है, और उसके बाद जो है ग्रामीण अवसंरचना के कार्य है, और जो 111 ऐसे काम है जो ग्रामीण अवसंरचना के है, जिसमें कि सारी बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं ग्रामीण विभागों की, रोड हो गए, पुल पुलिया हो गया, खेत सड़क हो गए, किसी स्कूल की लैबोरेटरी की बिल्डिंग हो या क्लासरूम बिल्डिंग हो या टॉयलेट्स हो या फिर आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हो, जो भी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ग्रामीण विभागों में है वह सारा 111 कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में आता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी ऐड की गई है जिसे कि हम आजीविका मूलक गतिविधियां कहेंगे, जिसमें कि 98 काम उसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना जब करना पड़ता है तो उससे निपटने के लिए भी 38 ऐसे काम है जो कि इसमें ऐड किए गए हैं।
0: रोहिणी जी, अभी आपने 128 कार्यों का जिक्र किया जल सुरक्षा के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की जो स्थिति है थोड़ी सी ऐसी नजर आती है कि वहां पर काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, साथ ही कृषि की जरूरतें भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहती है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए। तो इनका जो निर्धारण किया गया है 128 कार्यों का, इनके पीछे क्या यही सोच रही है सरकार, कुछ और भी प्लान कर रही है जिससे लोगों को और भी लाभ मिलेगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम पानी की बात करते हैं तो

0: उसके सेंट्रल स्थान पे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और इसलिए किसान ही और जलवायु और जल सुरक्षा, ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर ये बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। और किसानी के साथ साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे लचीलापन कहते हैं वो करने के लिए, या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात, इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली अफेक्ट होने की संभावना है, कुछ एडवर्सली अफेक्ट हो भी गए हैं, तो ड्रॉट प्रूफिंग की जो बात है, क्लाइमेट रेजिलियंस की जो बात है, यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है, सोच में रहा है, और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई है।
1: आपने ये जिक्र किया था कि मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें 100 स्ट्रीट लाइट की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, पुस्तकालय, स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाओं या फिर अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे?
0: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गांव के लोगों में है, और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए, ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, यह एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारे बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जब प्रसंस्करण होता है, उसका जब प्रोसेसिंग होता है, तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो इसमें ऐड किए हैं, और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के?
0: विकसित भारत, जी राम जी, जब हम कहते हैं तो उसकी शुरुआत में ही विकसित भारत आता है। ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी, निखिल जी, आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती, इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव्स में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है। और इसीलिए जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में, तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से नियोजन किया जाए इन कामों का। और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गांव की कल्पना की गई है, और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है, जिन प्लान्स में ये 375 टाइप के काम भी आएंगे।
1: रोहिणी जी, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं, और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग 1.1% था, अभी बढ़कर वो 26% हो गया। तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है?
0: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह केवल रोजगार देने वाला प्रोग्राम नहीं है, यह रोजगार के आगे जाके आजीविका की बात करता है। और इसीलिए पहले के प्रोग्राम में एमजी नरेगा में लाइवलीहुड के बारे में बात ही नहीं की गई थी, अगर थी तो भी केवल एक या दो बहुत ही कम 1% काम जो थे वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज में आते थे। विकसित भारत जी राम जी वही परसेंटेज जो है अब वो 26% हो गया है। इससे पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है विकसित भारत जी राम जी में इन अनुमेय कामों को शामिल किया गया है। मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि ये काम केवल नंबर्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारे किसान जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण विभागों में रहते हैं, और किसान कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, धान्य होता है या फिर फल होते हैं, सब्जियां होती है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना एक बात है, अच्छा भाव दिलाना एक बात है, परंतु कई बार इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सही तरीके से उसका

0: भंडारण किया जाए, स्टोरेज किया जाए, सही तरीके से उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, या उसमें मूल्य संवर्धन किया जाए, उसमें वैल्यू एडिशन की जाए, तो हमारे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। और इसीलिए हमने लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में खाद्य प्रसंस्करण हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज हो, या फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो, ऐसी कई सारी चीजें हमने इसमें ऐड की है। अन्नदाताओं से अगर हम महिलाओं तक जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, गांव में ये दीदियां रहती है, लखपति दीदियां बन चुकी है, करोड़पति बनने की ओर अग्रेसर है, तो ये हमारी जो दीदियां हैं वह भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, परंतु उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसे काम भी अब हमने जो है विकसित भारत जी राम जी में अलाउ किए हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कोई एक एंटरप्राइज करना चाहता है जिसके लिए कि उन्हें वर्कशेड की जरूरत है, तो अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से वह वो वर्कशेड बना सकती है। कोई एसएचजी चाहता है कि हम एक नर्सरी रन करें जिससे कि प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिले, वह भी कर सकता है। तो हमारी दीदियां, हमारे युवा और हमारे अन्नदाता, इन सभी के आजीविका के जरूरतों को केटर करने का जो सामर्थ्य इन 98 कामों में है जो कि हमारे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
1: श्रोता, हम आपको बता दें कि नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्यों को इनमें शामिल किया गया है। तो रोहिणी जी, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इनका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना है, या फिर इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और दीर्घकालीन आजीविका से भी जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाई गई है?
0: बिल्कुल सही कहा, 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो एक मिनिमम गारंटी दी गई है कि 125 दिन रोजगार मिलेगा, परंतु विकसित भारत जीराम जी यह कहता है कि हमारे दीदियों को या फिर हमारी महिलाओं को या फिर अन्नदाताओं को केवल 125 दिन का अकुशल रोजगार लेना ही उनका एस्पिरेशन नहीं है। वह चाहते हैं कि उनको दीर्घकालिक एक आजीविका के अवसर मिले, और वो करने की क्षमता जो है विकसित भारत जीराम जी के कार्यों में है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे ग्रामीण विभागों की बदलती हुई जरूरतें अगर आप देखें, तो अगर एक पैकेजिंग और ग्रेडिंग यूनिट भी अगर हम गांव में बनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के लिए काम आ सकता है, मिनी फ्लोर मिल्स बनाए जाए, मार्केट यार्ड्स बनाया जाए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कई विभागों में भारत दुनिया का बहुत बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और अगर हमारे पास मिल्क चिलिंग प्लांट्स अगर बन जाए, क्लस्टर लेवल पे भी बन जाए, तो भी हमारे युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़ करके दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है, और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम एक टारगेट सेट करके बैठे हैं कि हमें बहुत ही जल्दी अपने यहाँ से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए या फिर और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो है वो विकसित भारत जी राम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जी राम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जीराम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो अंत्योदय वाले सेक्शंस है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है। और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: रोहिणी जी, जैसा कि आपने भी बताया, तो मैं आपसे यहाँ पर यह जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं, वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको विकसित भारत जीराम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का, जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स का एक फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया, और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा, तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम

0: से पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से वह यह तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की, तब जो है ग्राम सभा ही यह सूची बनाएगा कि ऐसे कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको कि यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस में उसे डिस्प्ले किया जाएगा, और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है। और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेके वह भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें तो स्थानीय जरूरतों और तकनीकी रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर तकनीकी क्षमताओं का ये कहें कि अभाव है या फिर वहां पर सीमित है वो व्यवस्थाएं।
0: मंत्रालय या भारत सरकार जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो द्योतक बननी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज टू मेक द पीपल्स लाइव्स इजियर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की, उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह 2 प्रकार से किया जा रहा है। मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है, वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहां पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहां पर कंस्ट्रक्ट करने से वहां सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा। तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है, परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा। वह एसेट्स के दोहराव को भी रोकेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इसकी वजह से छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एन एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई टेक्निक फेल हो जाती है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी।
1: श्रोताओं को बता दें कि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से डिजिटल निगरानी और विभिन्न योजनाओं के निवेश के अभिसरण की बात कही गई है, और ये प्रणाली जमीन पर कामों के दोहराव को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साबित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस तरह से आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी 38 कार्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसमें कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे?
0: 38 काम ऐसे है जो पहली बार यह कैटेगरी ऐड की गई है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। यह एक सेपरेट कैटेगरी कभी नहीं थी जिसमें कि आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए, पहली बार यह एक सेपरेट कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें कि 38 काम है। हमारा देश जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है। कोस्टल एरियाज है जहाँ पे साइक्लोन प्रोन कुछ एरियाज है, भूस्खलन के लिए वल्नरेबल कुछ एरियाज है, जहाँ पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए हमने यह 38 काम जो है इसमें ऐड किए गए हैं। कुछ काम इसमें ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके चलते फॉरेस्ट फायर्स की भी घटनाएं कई बार सामने आती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के मेजर्स जैसे कि फायर लाइंस हो गए, फ्यूल बफर जोन्स हो गए, वो भी अब ऐड किए गए हैं। जैसे कि फ्लड रिलीफ के शेल्टर्स, कई बार फ्लड आता है तो स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता है, वो ना हो इसीलिए फ्लड रिलीफ शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स का

0: स्ट्रेंथनिंग, ऐसे भी कई सारे काम जो।
1: रोहिणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है, निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है या करेगी?
0: सरकार ने विकसित भारत जीराम जी के एक्ट, कई सारे गुणवत्ता मूलक गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है। पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी, विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है, जो कि एक्ट का ही एक पार्ट है। और सोशल ऑडिट की जो व्यवस्था है, जिसमें कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जीराम जी में, उनकी निगरानी करेंगे, तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा। ऑल्सो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स। जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसका त्रिस्तरीय जियो टैगिंग करना पड़ता है, जैसे कि काम होने से पहले एक बार, जब काम हो रहा है तब एक बार, और काम होने के बाद भी एक बार जियो टैग करके फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की आपने बात की, तो एक डिजिटल निगरानी के लिए वह एक बहुत अच्छा साधन बनेगा, जिससे कि पता चलेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से पंचायतों में कौन से कैटेगरी के कितने कार्य जो है वो चल रहे हैं, कितने अभी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर ये निगरानी की व्यवस्था और भी बेहतर होगी, और राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है कर रही है। अभी हमारा नेशनल लेवल पे 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई, और फिर राज्यों में भी हुआ राज्य लेवल पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारा NIRDPR का संस्थान है, उसके माध्यम से भी बिल्कुल गांव लेवल तक की कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो सरपंचस है, हमारे पूरे देश में जितने प्रधान और सरपंचस हैं, उनके लिए भी हमने पंच सम्मेलन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे कि आज तक लाखों जो है एरियाज में पंच सम्मेलन जो है किए गए हैं, जिससे कि हमारे सरपंच और प्रधान भी जाने कि उनका विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन को स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती है जब भी कोई आपदा आती है, और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा? ये
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशन आपको एक्ट देता है, उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है, ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है, ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125, वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से। अगर आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में आपदा के लिए हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो कहां पर आई है, कहां पर लोगों ने काम किया है, कहां पर कौन कौन से रिलैक्सेशन अवेल किया है, तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है, और हम भी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं। तो अगले वर्षों में या अगले एक दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या यह सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा, या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उस पे भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे?
0: विकसित भारत जी राम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा

0: यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि विकसित भारत बनाना है, और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। तो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव तो विकसित भारत बनाने का ही है, और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 साल का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे आपने कहा अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीबी जी राम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी, हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत जी राम जी।
1: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करनी चाहिए?
0: 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है ऐसा मैं कहूंगा। विकसित भारत जीराम जी में जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको देखें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उन्होंने भी विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जीराम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भारत की ओर जाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा।
1: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं?
0: निखिल जी, विकसित भारत जी राम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है, इसीलिए आपने जो पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीबी जी राम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार भी उसके साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, हमारी दीदियां जैसे मैंने कहा लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है, जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही है तो वीबी जी राम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास पा सकते हैं, कौशल पा सकते हैं और उसको कई सारे उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं। मुद्रा लोन अवेल करके कई सारे अपने खुद के एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने उठाना चाहिए।
1: श्रोता, अभी हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे से, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में तमाम विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद निखिल जी,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुई वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

दर नूं 25 बुनियादी अंक वधा के 5.5 फीसदी कीता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज संगरूर जिले के पिंड बड़वाल विच 47 करोड़ रुपए तो वध लागत वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नींह पत्थर रखा। कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने कहा सूबे विच बागवानी नूं प्रफुल्लित करन अते किसानां नूं बेहतर सहूलतां मुहैया करवाउण लई हर जायज मंग दा हल कीता जावेगा। कपाह दे विश्व व्यापी आर्थिक समाजिक अते चगिरदे संबंधी महत्व नूं उजागर करन लई अज विश्व कपाह दिवस मनाया जा रहा है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 गैर कानूनी हथियारां सप्लाई नैटवर्कां दा पर्दाफाश करदिआं इक नाबालिग समेत 8 मुलजमान नूं 15 पिस्तौलां समेत गिरफ्तार किया। साल 2026 का रसायनिक बयान विच नोबल इनाम फ्रांस के हेनरी कैंगन अते जापान के कैसो सुआई दी ऐलान किया गया। मौसम विभाग ने 8 अक्तूबर तक चंडीगढ़ तो इलावा पंजाब के कई जिलों हरियाणा के कुछ जिलों गरज चमक नाल

हल्के दरिया में मीदी जेलो अलर्ट जारी किया है। हुण तुसी सुन रहे सी मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं वी सुन सकते हो। लो जी, हुण वेला हो गया प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश दा। जे प्रोग्राम ही तुहाडी फरमाइश दा है ते थोड़िया फरमाइशां थोड़े वट्सएप ते मैसेजेस साडे लई बहुत जरूरी है, बहुत खास भी है साडे लई। सो जे तुसी साडे तक जुड़ना चाहुंदे हो सानू मैसेज भेजो और अपनी फरमाइश पूरी करवाओ ते जिहड़ा साडा वट्सएप नंबर है 94655-36077 तुसी अपने फोन ते वट्सएप ते सेव कर सकदे हो ते सानू मैसेज भेज सकदे हो। ते इस नाल ही अज असी तुहाडे नाल रूबरू होवांगे, गलबात करांगे फोन ते और साडा जिहड़ा फोन नंबर है 0181-23-42-173। जी हां, मैं दोबारा बोल देना 0181-23-42-173 और 0181 लाना ना भुलना। जल्दी जल्दी फोन मिलाओ और साडे तक पहुंचो, फिर असीं करदे हां गलबात ते तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करदे हां। लो जी, प्रोग्राम दा आगाज करदे हां सोहणे जिहे गीत दे नाल। आनंद माणो जी इस गीत दा।

अपनी धुन के है पूरे पक्के, कोई न समझे इनको अनारी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी।

मंजिल है मुश्किल, गिरने का डर है, लंबा सफर है, तेरी डगर है, मंजिल है मुश्किल, गिरने का डर है, पर न रुकेंगे, चलते चलेंगे, ये सारी दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी, चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी, थोड़े

0: आठ अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
1: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
0: हर थोड़े से भाई टूटे ना।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो। अरे रानी माँ से मुझको

0: जी मौसम पटियाले।
1: ठीक है। अच्छा जी, उदा चेंज हुआ कुछ मौसम, जो बदलाव आया जी,
0: हाँ जी हाँ, ठंड जोर फट रही है जी।
1: फट रही है जी, तो तुसी की कर रहे हो?
0: है जी, मैं मेहनत मजदूरी करता जी।
1: नहीं नहीं वो तो बहुत वधिया गल है, मेहनत मजदूरी करनी चाहिए है, पर तुसी ठंड तो बचा लिए की कर रहे हो, जेड़ा हुन चेंज हो रहा मौसम, बदल रहा जेड़ा मौसम?
0: असि तो बहुत बचाव रखते हैं ठंड तो।
1: बहुत वधिया, बचा
0: हाँ
1: रखना
0: जी
1: घरदिआं दा वी बचा रखना जी,
0: हाँ जी हाँ।
1: है ना। हुण दस्सो किहड़ा गीत सुणोगे प्रोग्राम च?
0: नाम फिल्म का सुना दो जी, बैरिया दे।
1: क्या बात है जी, लो जी आनंद माणो जी इस गीत का, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़न लई जी।

0: ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में
2: निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
3: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
2: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण

चरण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों

0: रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye. सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The Prime Minister said, India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in the last 1 or 2 days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endangers the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royd Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were 3 Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo-flagged ship, Alpha Vatan, also came under attack yesterday. Expanding on India's broader diplomatic efforts,

0: से उतर मन पसंद गीत होंगे। दोनों से उतर के आरती श्रवण करेंगे गुरुवाणी विचार। उस दिन ठीक दिनों के तीन बजे श्रवण करेंगे कुछ भजन कुछ भक्ति गीत। चारवें तड़के सवेरे श्री दरबार से अमृतसर ले चलेंगे जितों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण श्रवण करोगे। ऐसी सवेरे चार बजे तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा की रूपरेखा। आओ हम गलबात करते हैं जी अपने प्रोग्राम के पहले कॉलर के नाल। हैलो
1: हैलो सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हैं किस जगह तो बोल रहे हैं? मौसम गर्म से ठंडक भी पानी की लोड़ से हूं थोड़ा मौसम ठंडा हो गया डर लगता पानी तो रोज गर्मी है चंडीगढ़ रोज गर्मी है। चलो राजू जी तुम्हें गलत करके बहुत चंगा लगे
1: महेंद्र
0: कपूर ने तो पसंद गीत जरूर जरूर प्ले करेंगे जी। कॉल करने बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, तुम्हें गलबात करके बहुत चंगा लगा। उम्मीद करते हैं तुम दोबारा भी कॉल करोगे। राजू जी की पसंद गीत प्ले करने से पहले असं कुछ वट्सअप मैसेजेस फटाफट शामिल करेंगे जी जो साढ़े स्रोता सू लगातार भेज रहे हैं। नंबर 94655-3607 से साढ़े ओवरसीज लिसनर्स में एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर तुम मैसेज करना चाहते हो जो साढ़े अगर स्रोता इंडिया के बाहर को मैसेज करना चाहते हैं साढ़ा कंट्री कोड +9900 नहीं भुलना जी। मुस्कान जैन कोई भी पंजाबी सॉन्ग प्ले कर दो बहुत बहुत शुक्रिया जी। चोगर जी मैसेज भेज रहे हैं सानू पिंड मिर्जानपुर तो जिला गुरदासपुर पंजाब तो। सत श्री अकाल जी, यह फरमाइश मेरे सत्कारयोग पिता श्री जुझार सिंह जी माता जी हरजीत कौर और मेरी लाडली भैन महकप्रीत कौर जी के नाम है। धन्यवाद जी। सजन जी के गीत सुनना चाहते हैं जरूर प्ले करेंगे पर फिलहाल होल्ड रख रहे हैं जी। मैसेज भेजने के लिए अनमोल जी बहुत बहुत शुक्रिया। पिंड था बठिंडा तो हरजिंदर सिंह जसवीर जस्सी सीता ते गीता कहते कोई भी पंजाबी गीत अपनी पसंद का प्ले कर दो। शुक्रिया जी इन्हें प्यारा मैसेज भेजने के लिए। सुशील कुमार चिलाना परिशा चिलाना पप्पी बैठी पिंड डाका रोड़ा वाले हनुमानगढ़ तो मैसेज भेज रहे हैं। शुक्रिया जी मैसेज के लिए। मंडी हरजी राम मलोट तो मथुराम शर्मा ललित शर्मा इंद्राज शर्मा सुरेश शर्मा कहते कोई भी पंजाबी गीत सुना दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मैसेज भेजने लिए। बठिंडा तो मैसेज आ रहा है जी रविंदर सिंह गगनदीप कौर जसमीन कौर गुरलीन कौर शिंदरपाल लो जी ने सब रल मिली फरमाइश था राजू जी का हुक्म प्रोग्राम का पहला गीत फरमाइशी अनुराधा पाल महेंद्र कपूर की आवाज़ से एक गीत प्ले करते करते एक वादा कर रहे जी अपने सारे सुनने वालों का सारे मैसेज पढ़े जाएंगे जरूर पढ़े जाएंगे थोड़ा नाम लिया जाएगा और अगर तुम फरमाइश को नाम लिख के भेजिए वो भी जरूर प्ले की जाएगी। इस करके इन्हें सोचो कि कॉल नहीं मिल रही लाइन बिजी है तो तुम अपनी हाजरी प्रोग्राम में मैसेज नहीं मिलवा सकते हो। सानू डिटेल थोड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस की और फोन कॉल्स की।

0: sendo o problema sogar, também tornou ardidos a metade se o homem chegou feito a razão, e provavelmente assim o regi pica bem de uma forma a ser desfruta se não for uma carca cardene. Ou seja, não for uma forma de um zero que se assim tem batalha e que se o cata. Então se a primeira forma é, se não vai ser bem para o nosso acteu, se não manda, se não é, se isso é para o dia, se a ti zero está. Bem quando o telefone se não é no patrão, mas fazer uma mensagem para o seu nome, se não liga para a mensagem de si. Algo não vai ficar bem de, por um dia, a minha conta na, de que de como, que ele chama o seu carrinho. Hello?
1: Hello, namaskar.
0: Namaskar, de como é que ele chama? Mohammed Harun
1: Gurdian, Gram Agbarpur, Tehsil Shiron, Jila Vidisha, Madhya Pradesh.
0: अरे वाह वाह, बहुत दूर से बात कर रहे हैं मोहम्मद जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम सुगात में।
1: जी आप कैसे हो?
0: मेरे को लगता है आप पंजाबी बोल नहीं पाते हैं, लेकिन पंजाबी म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ?
1: जी
0: आप म्यूजिक को सुन पाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आप बोलने में थोड़ी आपको मुश्किल है पंजाबी में। कोई बात नहीं, अक्सर हमारे आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते हैं दिन में और रात में, सिर्फ रात को?
1: जी रात को सुन लेते हैं।
0: अच्छा, अपने बारे को बताइए।
1: सुन लेते हैं, सुन लेते हैं,
0: क्या बात
1: है।
0: अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती बाड़ी करते हैं, बहुत खुशी हुई। आप फार्म आए यानी कि अंदर आते हैं आप, है ना?
1: जी इसका अभी सौगन और कटाई चल रही है।
0: जी जी जी,
1: मक्का की अभी बट्टे टूटे हैं, कटाई चल रही
0: है। चलो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मौसम कैसा है?
0: मौसम इस तरह बदलाव में है और पहले जैसे गर्मी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं बोल सकते आप, मतलब ठीक है, आगे से बेटर है।
1: जी काफी समय हो गया था आपसे बातचीत नहीं हुई।
0: अरे अरे, अब बातचीत करने के लिए कॉल की है कि जी हमें अच्छा लगता है आपसे बात करके, बिकॉज ये आपका अपना प्रोग्राम है, तो आप कॉल करेंगे तो अच्छा लगेगा।
1: जी जी,
0: आज कौन सा गीत सुना रहे हैं
1: आपकी पसंद पर? आपकी
0: चलिए चलिए चलिए,

जी ठीक है जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल किया। हम उम्मीद करते हैं आप हमें अक्सर कॉल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गिफ्ट प्ले करने से पहले हम कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे जो हमारे लिस्टनर्स हमें फटाफट से भिजवा रहे हैं और हमें उनको ट्रीट करना है। शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।

अगले मैसेज समूह भेज रहे हैं मधु कटेला तो कमल भालूजा मधु भालूजा सागर मालूजा उमंग मलिक आकांक्षा मलिक गुड़िया माही मलिक इशिता अरोड़ा किशनलाल राजू दीपू शीतल गोपाल पिंड मक्खनपुर बिश्ना तो मैसेज भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर तो बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा धनवाद है जी। सैक्टर स्टार तो मोहाली तो चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर तो डॉक्टर अमनदीप इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है। कालका तो शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज इन्होंने जी आई आखते हैं जी थैंक यू जी मैसेज भेजने लिए। सरहद बाजार पटियाला तो मैसेज भेज रही है प्रेम कुमार रहेजा कांता राणी चरण रहेजा डैनी नीतू जोत ते सजनी मलोट पंजाब तो राज शर्मा मीना योगेश मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइमन शर्मा स्वीट मास्टर निवान शर्मा कहते कोई भी पंजाबी गीत सुना दो जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजने लिए। लो जी बाकी दे मैसेजेस असी गीत सुनने तो बाद प्ले करांगे पढ़ांगे पहला सुनते हैं जी अमर मोरी दा गाया हुआ एक पंजाबी गीत बहुत चंगा लगे साडे कॉलर एमपी तो उन्हें दूरों सानू कॉल कर रहे हैं और उन्होंने कॉल लगी तुसीं सानू कॉल करो जी साडा नंबर 0181 2342 171 मैं तुहाडा दोस्त अमित

अगर तुसी भी प्रोग्राम हिस्सा लेना चाहते हो, गलबात करना चाहते हो, अपनी पसंद का गीत सुनना तो सारे सुनाना चाहते हो, सानू कॉल करो जी 0181 3242 171 और वट्सएप मैसेज भेजना 94-655-3607। वट्सएप वाले नंबर पर कॉल नहीं करना जी, प्लीज।

0: संदीप सिंह, पंकज अरोड़ा, अमरजीत कौर, सरोज ते मोनिका, बस्ती लड्डू लड्डू वाली फिरोजपुर पंजाब तो मैसेज भेज रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा। सत श्री अकाल भाई जी, आई लिसन टू योर प्रोग्राम फ्रॉम दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आई वर्क एज अ डिलीवरी राइडर एंड वाइल्ड राइडिंग अराउंड फॉर डिलीवरीज आई ऑल्सो एंजॉय लिसनिंग टू योर प्रोग्राम। प्लीज प्ले एनी गुड पंजाबी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस for me, I would really enjoy listening to it while I'm riding. Sohil Khan, Dubai, to message bhej rahe ne te kehnde ne ji tera program Dubai to sun rahe United Arab Emirates to. Utthe main ek delivery rider hun tak kaam karda ji te naal naal main drive karda hun deliveries de naal jo orders hunde ne te I enjoy listening to your program. Matlab mainu bahut changa lagda tera program sunna. Please play any good Punjabi song of your choice for me. I would really enjoy listening to it while I am riding. ते मेरी एक request है जी, तुसी बेशक सारा program सुनो, पर rule regulation में follow करना जी। Music च मस्त होके किधर कोई rule ना तोड़ देना, मेरे ही हाथ जोड़ के बेनती है। तोड़ा message पढ़िया, बहुत चंगा लगे, बहुत खुशी हुई कि सानू तुसी सुन दे और साडा प्रोग्राम एंजॉय कर दे। सुहेल खान, दिस इज वेरी नाइस एंड वेरी काइंड ऑफ यू फॉर सेंडिंग अस अ मैसेज। आई होप वी विल बी इन टच विद यू। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम को जारी रखते हुए आओ हम गलबात करते हैं जी प्रोग्राम दे अगले कॉलर के नाल। हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, केड़े शहर तो? हलाशेरी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि असीं प्रोग्राम नूं वधिया बना के पेश करिए। अज किहड़ा गीत सुनना चाहोगे? चलो पसंद का गीत आप सारे रल के सुनते हैं जी। कॉल करने बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: तो सूफी डेज की थी फरमाइश सनू मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा ने की सी जी पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो सरनल इस गीत दौरान ही प्रोग्राम दे अगले कॉलर लाइन से जुड़ चुके हैं जी आओ वेलकम करिए हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी किस जगह तो
1: मैं सब दिलबाग सिंह बोल रहा जी कैनेडा तो
0: दिलबाग सिंह जी कैनेडा तो बोल रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा जी वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम स्वागत विच की हाल चाल है थोड़े
1: थैंक यू सर बढ़िया जी सर हाल बढ़िया
0: जी कैनेडा सर तुम किस जगह ते होंगे जी
1: एबर्सफोर्ड बीसी
0: ओके उत्थे दा वेदर किस तरह दा जी
1: हाँ वैदर ठीक है जी वैदर जब अपना दिसंबर जनवरी च होंदा
0: ओके
1: थोड़ी ये जी गर्मी है मतलब दोपहरे हो जांदी सवेरे सवेरे तो अंदर ठंड बहुत होंदी है
0: अच्छा जी तो तुसी केड़े साल मूव कर गए से कनाडा
1: मैंने तो जे 5 के साल ही होए जी इत्थे नु बच्चे पहला आया सीगा बेटा
0: अच्छा
1: उस बाद बेटी इत्थे स्टडी करदी पई है
0: चलो चलो चलो पर बड़ी खुशी की गल है कि तुसी उत्थे जाके भी अपनी मां बोली नूं अपने देश नूं नहीं भुले हले भी पंजाबी सॉन्ग एंजॉय करदे हो और आकाशवाणी सुनदे हो साडे लई बड़ी फखर दी गल है अज केड़ा गीत सुनाओगे जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल अज केड़े सिंगर दा गीत सुनना चाहोगे ठीक है जी मेरे को जग जिंदा मिले भी है ते आज चोरी कुटी भी है केड़ा किस दोनों चीजों बेटर लगेगा दसो केड़ा सुनाइए चलो चोरी सुनाने से शुक्रिया जी कॉल करने बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे नाल गलबात करके बहुत चंगा लग्या तो उम्मीद करते हैं कि तुसी सानू दोबारा भी कॉल करोगे लो जी तुहाडी पसंद का गीत हरभजन मान दा गाया हुआ आज चोरी कुटी

प्रोग्राम की अगली पेशकश आओ इंजॉय करते हैं जी गुरु रंधावा का गाया हुआ एक पंजाबी गीत। इस तो बाद सुनोगे सुरिंदर कौर ते डॉली गुलेरिया दियां बोलियां। बस बने रहो जी सारे नाल, प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो पंजाबी मेलोडियस गीत।

आपह सूखम आपह अस्थूला, लकी न जाई नानक लीला। कथन मुताबक करते के गुण वर्णन नहीं किते जा सकते, उस दे बारे ता जानिया ही नहीं जा सकता। उस बारे कुछ कहना किस तरह संभव है, इस संसार विच सर्वव्यापी प्रभु सागर दी न्याई है। निक्की जी मछली वर्गा जीव किस तरह प्रभु दा अंत पा सकता है। हे प्रभु मैं असमर्थ हाँ, प्रभु तू ते सारे पासे व्यापक है, मैं तेरे तो परां जीवित नहीं रह सकता। जिमें मछली नू पता नहीं हुंदा मछेरा कौन है अते जाल किथे है, हे प्रभु मैं भी अनजान हर दुख वेले तेनू ही चेते कर दी हाँ। तू ते सबनी थाई भरपूर है, मैं तेनू बेसमझी करके दूर समझ लिया सी, हुण मैं तेरी ही रजा च राजी हाँ। तू मेरे कीते कर्मां नू वेख रहा है, मैं मुकर नहीं सकदा कि मैं तेरे वास्ते कुछ भी नहीं कर सकिया। हे प्रभु पावे मैं तेरिया दित्तियां दातां विच ही राजी हाँ, मैं होर केड़े दर ते जावां, ऐसा होर कोई दर नहीं है। मेरा शरीर अते जिंद आप ही हो, मेरी यही अरदास है, तू आप ही नेड़े है अते दूर भी अते हर थां विचरदा भी है। आप ही अपनी सत्ता अनुसार सब कुछ वेखण वाला सब कुछ सुनन वाला सिरजणहार है। जो आप जी नूं पौंदा है उही आप जी दा हुक्म मेरे सिर मत्थे है, उस विच ही मैं राजी हाँ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी सिरी राग विच उचारे हुए शब्द विच फरमाउंदे ने, तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है तुझते निकसी फूट मरा। इस शब्द का गायन किया भाई जसबीर सिंह ते उन्होंने रागी ज

खूबसूरत चित्रण करते हुए फरमाते ने कि हे सर्व कला समर्थ सब तो वड्डे प्रभु आप महान हो। मैं थोड़ी मत नाल आप जी दे बारे की कथन कर सकता हां। तुसी तां बिना किसी वितकरे दे ना शुक्रे जीवां दी भी प्रतिपालना करते हो। आप समदृष्ट हो अते कृपा दे घर विच ही रहिंदे हो। हे प्रभु तुसी मेरी समझ तो परे हो। बुद्धि मंडल दियां परतां आप जी दी होई कृपा बारे कुछ भी नहीं समझ सकियां। मैं नीवी मत वाला आप जी बारे की जान सकता हां। मैं मूरख ने तां आप जी दा अमोलक नाम छड़ के पशु मत रखदे हुए कौडियां ही इकट्ठियां कीतियां ने। मैं अन्याणी मत वाला बारिक हां। ना थिर रहण वाली माया जो त्यागनी चाहिदी सी पाप कर करके जोड़दा रहा। हे प्रभु हुण मैं आप जी दी शरण विच आया हां। कृपा करो मेरी शरण आए दी लाज रख लो जी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत कना पूरन दृष्ट तेरी राम। इस शब्द का गायन किया भाई हरि सिंह ते उन्होंने

इस शब्द गायन की तसीह पाई जसबीर सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु रामदास जी बिहागड़ा राग विच उचारित छंत दे तीजे भाग विच अकाल पुरख दी समरथा अते विशाल

0: तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई हरी सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरमीत सिंह।
1: इह पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी दा उचारण कीता होया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 547 ते ब्याहगड़ा राग विच अंकत है। ए छंत दा तीजा पद है।

इस पद शब्द विच धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस अकाल पुरख परमेश्वर दी सिफत सलाह इउं वर्णन करदे हन। हे प्रभु जी, तुसी वड्डी ताकत भाव समर्था वाले हो, मेरी अकल बहुत छोटी जही है, तेरे इस वडप्पन नू समझ नहीं सकती, क्योंकि हे प्रभु तेरी ता नदर ही इकसार है, भाव तू सबना नू इकसार देखण वाला है। हे प्रभु, तू ता अकिरत कणा दी भी पालना करदा है। इस प्रथाए धन श्री गुरु अर्जुन देव जी दा श्री राग विच मुबारक अंग 83 उपर बचन सुभाए मान है। हे प्रभु, तू उना नू भी पालदा है जो तेरे कीते उपकारा नू भुला दिंदे हन। इना ना शुक्रियां दी रोजी दा प्रबंध भी प्रभु आप करदा है। हे प्रभु, तू सदा ही जीवां दियां भुलां बख्शण वाला है। गुरवाक है अकिरत कणा नू पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। गुरबाणी मुताबक दरअसल अकिरत कण कौन हन? माज राग दी वार विच आद गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी दा पावन पवित्र बचन है, जो 143 अंग उपर सुभाए मान है। सतगुरु फरमाउंदे हन, अपने मन दे पिछे तुरन वाले मनमुख लून हरामी बंदे परमात्मा दे कीते उपकार दी सार नहीं जानदे। ओ बस विखावे वास्ते भाव बद्दे रुद्दे ही उस नू सलामा करदे हन। इस तरह उस खसम नू प्यारे नहीं लगदे, भाव पौंदे नहीं हन। मनमुख लून हराम क्या ना जानिया, बद्दे करन सलाम खसम ना पाणिया। पर प्रभु ऐसा मेहरवान है, किरपालू है, उस दे गुणां दा वख्यान करदिया होया कलगी तर दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पावन बाणी अकाल उस्तत विच उचारण करदे हन, जो प्रभु जड़ ते चेतन वस्तुआं नू रिजक दिंदा है, जमीन ते आकाश विच विचरण वालियां नू भी संभालदा है। हे प्राणी, तू क्यों चिंता करदा है ते डोलदा है? तेरी सार संभाल भी प्रभु ही करन वाला है। बचन हन, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दह है, काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मा पत लह है। विचार अधीन शब्द विच बख्शिश करदे हन, अगाध बोध अपार करते मुहे नीच कछु ना जाना। मनुखी मन दी समझ तू बाहर प्रकृति दे पारावार तू परे, बेअंत प्रभु तू अथाह है, मैं अल्प बुद्धि वाले ने अते कर्मा करके नीच ने, तेरे कीते पर उपकारा दी सार नहीं जानी। रतन त्याग संग्रहण कौडी पशु नीच एयाना। हे मालक, हे परम पिता परमात्मा जी, मनुखी मन दा सुभा है यह रतना वर्गे कीमती पदार्थ छड़ कौडियां वर्गे तुच्छ पदार्थ इकट्ठियां करदा रहिंदा है। गुरु ज्ञान तो विहूणा पशु अते नीच बिरती वाला हो के अनजान ही पौंदा फिरदा है। गाफल ताई विच सुत्ते हुए मन नूं झंझोड़दिआं सूही राग दी वार विच दूजे गुरदेव धन गुरु अंगद देव जी महाराज बख्शिश करदे हन। जीवन रूपी रात दी खातर धन पदार्थ इकत्र करदा रहा, पर मौत रूपी सवेर हुंदिआं ही इस नूं संसार दे पदार्थां नूं छड के जाना पैंदा है। जीव आत्मा दे पास बस पछतावा ही रह जांदा है। रात कारण धन संची है, भलके चलन होए नानक नाल न चलई फिर पछतावा होए। श्रोमणी भगत कबीर जी महाराज जी दे पावन बचन हन, जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲੱਖ।

0: डोर चलती बार ना कछ मिलियो लई लंगोटी तोर। हे कबीर प्रभु नालों टुट के मेरी माया जोड़न दा की लाभ, जिस मनुख ने तरलिया नाल जोड़ के लखां करोड़ां रुपए भी इकट्ठे कर ले होण, पर मौत उपरंत उस दे संबंधी रिश्तेदार उस दे लक नाल बन्नी हुई वांसली भाव ओ लंगोटी जिस विच माया सी उस नू तोड़ लेंदे हन। इस पावन पवित्र शब्द दे अखीर विच पंचम गुरदेव धन श्री गुरु अर्जुन देव जी उस प्रभु अगे अरदास करदे हन, नानक सरण समर्थ स्वामी पैज राखो मोरी। हे सब ताकतां दे मालक समर्थ मेरे स्वामी प्रभु जी, मैं तेरी शरण आया हाँ, किरपा करके मेरी पैज इज्जत रख लवो जी। तनासरी राग विच पंचम गुरदेव जी दे बचन हन, हे प्रभु असी तेरे ही आसरे परने हाँ, सानू तेरी ही सहायता दी आस है, तू ही साडा सज्जन है, तू ही सानू सुख देन वाला है, हे दया दे घर हे सब दे रख्या करन वाले, साडी दर ते आयां दी लाज रख, असी तेरे दर दे गुलाम हाँ, तुमरी सरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, रख हो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले।
1: तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी गुरमीत सिंह। राग सूही विच पंचम पातशाह प्रभु की कीर्ति करन दी लोचा रखन वाले जीव वल्लों रब अगे कीती हुई बेनती बारे दसते ने कि हे दीना उत्ते दया करन वाले दयालु प्रभु, मेरी बेनती सुनो। जिमें साधु जन तेरे गुण गाउंदे ने, हे मेरे प्यारे प्रभु मेरे वास्ते भी कोई सबब बनाओ कि मेरी रसना भी आप जी का नाम उचारदी रहे। तेरा सिमरन जीवन दी न्याई है, पर जिसते तू कृपा करदा है उही तेरा निकटवर्ती बनता है। भगत जना दी भुख नाम रूपी आहार नाल ही मिटदी है, नाम दा दाता तू ही है। तेरा नाम जपदिया ही संता महापुरशा ने आत्मिक सुख माणिया है, ए सब कुछ देन वाला दाता सब कुछ तो वाकिफ है। से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे साथियां वल्लों गायन कीता होया।

ओलू चरखा चक्की चक थलवारो ले बहुत आनंद लाटू मदानियन का पंखी पुंदियों में न सहा सुए चढ़ पवाई है जंत नानक पुंदियां गंत नयंत बंदर बंद पाए सुए पाए कितन चिन सब को नच नच हसे चले से रोए उठ न जाही सतना हो नचना कुदर मन काचा नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ पौड़ी न

हम है जात है हम कर्म कमाहे हम बंदना है फिर जो नहीं पाए हम मैं कथों पजै किस जमे जाए हम मैं हुक्म है पै कित फिरा हम मैं दी गुरु है दारू पी समाहे

सच ता प्रजाणी जे रदा सच्चा होए कूड़ की मात्रे तन करे सत होए सच ता प्रजाणी जे सतरे प्यार ना सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार सच ता प्रजाणियां दे जुक जाने जियो तरत काया सदके बठदे करता बियो सच ता प्रजाणियां दा सिख सच्ची लै दा जान जी की किस पुन दान करे सच ता पर जाने आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के मैरे करे निवास सब सब रहे दा रूपा।

0: तू सच्चा साहिब सिफत वाले जिन की ती सो पार पाया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रिया महला दूजा
1: योग शब्दों ज्ञान शब्दों वेद शब्दों ब्राह्मण खत्री शब्दों सूर शब्दों शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्दों एक शब्द देखो जाने वे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन दे।

मारिए जे काले कालना ते वो नाव पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दरगे गया हारिए पढ़िया त्यों में विचार गे विचारिए हो चले सो गे।

जमत ना त्रास, गुर अमर गुरु श्री सत, कलयुग राखी पात, अगन देखत गात, चरण कवल जास, सबिद मान्यो मान, तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दियन, गुर रामदास, रड जिस है तारिया, तारत आर व्यों, आर पवन ते नीर सार, अवर अनल अनाद किया, सास रेख नेस सूर देन, सैल तरु फल फूल दिया, सुर नर सप्त समुंदर के तारियो तिर भवन जास, सोई एक नाम हर नाम सत, पायो गुर अमर परगास, सुर नर सप्त समुंदर के तारियो तिर भवन जास, सोई एक नाम हर नाम सत, पायो गुर अमर।

0: कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सामने सुनियो बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर दा तारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहे बिचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दिद दिन के गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पत प्रेत सुर नर पे जाम गुरु है वल तने क्या गारव दीजे जाम गुरु है वल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु है वल ज्ञान ध्यान अलन पर जाम गुरु है वल शब्द साखी सो सच्चे कार जो गुरु गुरु एन जपे दास पाठ बेनत कह जो गुरु नाम रिद महत है सो जन्म मरण दो थे रह गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर का शब्द सुपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कौ नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अक्यथ संसार में
1: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो पुती जो प्यास पीयूष पीवन की बंचत सेत को बेत मिलायो पूरन पो मन ठोर बसो रस बासन सोजो दहन दस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जल तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरुमुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर किन्नी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस्बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरयो भन दास आस जगतर गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर

अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख पारे कर आच, फुन द्रौपदी लाज रखी हर

0: चोलना गुरु गोरो गुरु गोरो गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपे नाम नवनिद अपे रसन अनस रस सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइए गुरमुख त्याइए अन्न मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम बंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो
1: गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाध शब्द जिस केरे फुन दुख नास सुखदायक सुरो जो तरत ध्यान बसत तेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइय पुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइय अमृत प्रवाह छुटकंद सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइय नाम निर्बाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए।

इस गुरु बचन सुन कन दे हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत।

जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप की देवाद दे सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच्छ कच्छ हो बरह जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिए तार तज बिकार मन गए अंदर।

सतजुगरा संतोका तरम अग्गै रतवा हो त्रै तै रजते का जोर अग्गै रतवा हो द्वापर तपेका सत गिरतवा हो कल जुगरा तगन

सब को ससमावै रे करै भरपूर राम नाम दे वाह मैसूर नायले प्रास्त गए नानक पौ मुखंत्र पाए जुज मैं जो छली चंद्रावल कानक समझा दो वह पर जात।

वाले आओ, जिनका उद्देश्य ज्ञान अंजन दिया एनी नेत्री जग निहाल ले आ, बसम शोर दूजे लगे डूबे से बन जा रहे आ, सदगुरु है बोल था लेकिन विचार आ, कर कृपा पर।